आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तो हाँ दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर दे अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने। वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने। तोहा सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हुंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ये तो हुंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हां कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हां सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पर।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जा करके लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: तो मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा उठ पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: शादी हुई

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आसमान से नजर रखेगा नया सैटेलाइट, डिपो में इस माह मिलेंगे 5 किलो चावल। सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिला में पर्यटन व धार्मिक यात्रा होगी सुगम। हिमाचल में आधार से जोड़ी जाएंगी 72 सरकारी योजनाएं और सेवाएं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थान हो सकता है हिमाचल में स्थापित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होने वाले देश के पहले इमेजिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया और GSLV के जरिए 2300 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कराया। उपग्रह को मिशन से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आसमान से नजर रखने वाली आंख करार दिया और यह उपग्रह वास्तविक समय में तस्वीरें उपलब्ध कराएगा, साथ ही कृषि आपदा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में देश की मदद करेगा। इसरो ने बताया कि उपग्रह IOS-05 यहां से प्रक्षेपित होने के करीब 18 मिनट बाद निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने उन अटकलों को खारिज किया कि IOS-05 एक टोही उपग्रह है, जहां कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में संचालित होते हैं। वहीं IOS-05 करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होगा, जहां वह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तालमेल बैठाएगा। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में इस माह उपभोक्ताओं को चावल का कोटा 1 किलो कम मिलेगा। इस बार पात्र उपभोक्ताओं को 5 किलो चावल ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले इससे डिपुओं में प्रति उपभोक्ता 6 किलो चावल का कोटा दिया जा रहा था। हालांकि आटे के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को पहले की तरह 12 किलो आटा ही मिलेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के बर्फबारी वाले दुर्गम क्षेत्रों में सर्दियों से पहले राशन की अतिरिक्त खेप भेजी जा रही है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को देखते हुए इस माह चावल की उपलब्धता के हिसाब से डिपुओं में कोटा निर्धारित किया गया है। इसी कारण सामान्य क्षेत्रों में चावल का कोटा 1 किलो कम किया गया है। विभाग की ओर से को उपभोक्ताओं निर्धारित कोटे के अनुसार राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। आटे के कोटे में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। हिमाचल में पर्यटन को पंख लगाने और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने पर्वतमाला परियोजना के तहत हिमाचल के सिरमौर जिले में के सफर को आसान बनाने के शिरगुल महादेव मंदिर, कांगड़ा में आदि हिमानी चामुंडा मंदिर, पालमपुर थ्रीचुंजा ग्लेशियर व चंबा जिले के भरमौर में भरमाणी माता मंदिर को रोपवे से जोड़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 4 परियोजनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशिष्टता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर स्थित चूड़धार चोटी पर लगभग 3,647 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव के रूप में पूजे जाने वाले ईष्ट देव शिरगुल महादेव का पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। कांगड़ा में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में लगभग 3,185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि हिमानी चामुंडा मंदिर नंदिकेश्वर धाम माँ चामुंडा का मूल एवं प्राचीन स्थान है। चंबा जिले के भरमौर से करीब 4 किलोमीटर दूर और 2,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमाणी माता मंदिर का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को अब हिम एक्सेस और हिम परिवार पोर्टल पर पंजीकरण व लॉगिन के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी।
इससे एक ओर जहां फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर अंकुश लगेगा, दूसरी ओर पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होगा। सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध 72 विभिन्न सेवाओं को इस प्रणाली के तहत लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के प्रदेश में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने अथवा मोहाली स्थित संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत विचार किया जाएगा। मीडिया को जारी बयान में अनुराग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की उच्च स्तरीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधा स्थापित होने से उद्योग और अकादमिक जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। राज्य में वर्तमान में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की सुरक्षा, रखरखाव और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क अवसंरचना संरक्षण कानून में अहम संशोधन किए गए हैं। किसी व्यक्ति की वजह से सड़क या अन्य ढांचा क्षतिग्रस्त होता है तो मरम्मत का खर्च, जुर्माना वसूला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधित कानून में सड़क अवसंरचना के डिजिटल और जियो कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। सड़क की सीमा का एक बार सही तरीके से डिजिटल मैपिंग और जियो कोऑर्डिनेशन होने के बाद कार्रवाई के लिए बार बार मौके पर भौतिक सीमांकन की जरूरत नहीं होगी। ऊना में विकसित हो रहे बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए 81 प्लॉट तैयार किए गए हैं। इनके आवंटन की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पार्क में बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भी निवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर से पहले चरण में उत्पादन शुरू हो जाए, मार्च 2027 तक सभी यूनिटें उत्पादन करना शुरू कर दें। इससे हिमाचल में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश के बाहर भी कच्चे माल की सप्लाई का रास्ता खुलेगा। बल्क ड्रग पार्क 11,240 बीघा में बन रहा है। पार्क में प्लॉटों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्येक प्लॉट के इर्द गिर्द 21 फुट चौड़ी सड़क होगी, जिससे उद्योगों तक वाहनों की आवाजाही सुगम रहे। इसके अलावा हर प्लॉट में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे? सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क

0: में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
0: तो याद रखना कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
2: चाय मांगी थी, क्या है ये?
3: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
2: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
4: अब क्या देख रहे हो पापा?
2: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
4: किससे?
2: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
4: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करे। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
3: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
5: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी में तीन चीजें ऐसी हैं जो एक बार निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। मुंह से निकले शब्द, बीता हुआ समय और किया हुआ कर्म। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि शब्द किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। समय की कद्र कीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त दोबारा नहीं मिलता। और कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आज किए गए कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में कल हमारे सामने जरूर आता है। याद रखिए, समझदारी इसी में है कि शब्दों में मिठास, समय में मेहनत और कर्मों में अच्छाई रखी जाए। आपके अनुसार इन तीनों में सबसे ज्यादा कीमती क्या होना चाहिए और क्या है? नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की बहुत ही अच्छी रही है, उम्मीद करती हूँ। हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। जी दोस्तों, आज 6 सितंबर 2026 का दिन। देखिए, दिन किस तरह से ऐसा लग रहा है कि अभी तो पहली सितंबर हुई थी और आज ही 6 दिन इस मंथ के भी निकल चुके हैं ना। तो इसी तरह से समय जो है ना वो निकलता जा रहा है। और वैसे भी त्योहारों का समय, ये जो सेलिब्रेशंस का समय होता है अपनों के साथ का, तो ऐसे में तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो ये जो समय है दोस्तों, सेलिब्रेट करने का भी होता है, लेकिन साथ साथ अपनी अहमियत को समझने का भी होता है। तो आप भी अपनी अहमियत को जरूर समझिए, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, यानी कि अपने परिवार का दिन है, अपनों के साथ का दिन है। तो फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई है। अभी ढेर सारी बातें आप सभी के साथ करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। क्योंकि मनोरंजन से अगर शुरुआत हो जाए तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरती कार्यक्रम में फैल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी मनोरंजन की। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत कुछ ना कहो मूवी का ही आप सभी ने एंजॉय किया शान साधना सरगम की आवाजों के साथ। तो दोस्तों कहना तो अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो कैसे कुछ ना कहें, ढेर सारी बातें, ढेर सारा मनोरंजन जो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जी दोस्तों, वो भी तो आप सभी तक पहुँचाना है तो उसके लिए कहना तो पड़ेगा ही, क्या करें, समय है, समय के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना बेहद जरूरी है। जी दोस्तों तो आइए इसी के साथ लेकर चलते हैं आप सभी को मौसम की अपडेट की ओर। तो आप सभी को बता दें इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगर हम नजर दौड़ाएं मौसम की ओर तो हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर हालांकि बारिश की संभावना जताई है लेकिन इस दौरान किसी प्रकार का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। जी दोस्तों आप सभी जानते हैं वैसे तो मौसम कब एकदम से करवट बदल दे पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी सावधानी जो है हमारे हाथों में है। फिलहाल आपको आंखों देखा हाल बताऊं तो अभी बहुत ही प्यारी सी धूप भी खिली खिली सी है और छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी सभी ये चाहते हैं कि थोड़ी सी धूप हो, तो बरसात के समय में कपड़ों को धूप लगवाई जाए, नहीं तो फिर उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, थोड़े से भी अगर बारिश में भीग जाएं तो स्मेल होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में धूप की ज़रूरत भी होती है। तो बिल्कुल आज थोड़ी सी धूप है लेकिन कब ये धूप हटकर बारिश का रूप ले ले कोई नहीं जानता। तो फिलहाल दोस्तों ये है मौसम की अपडेट और ये अपडेट आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से और खास करके रुचिका के माध्यम से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला है और ये इसी तरह से जारी रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों अपनों का साथ मनोरंजन से भरा हो तो क्या बात है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: चलो दोस्तों, और इस प्यारे से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हर दिन कार्यक्रम में कुछ खास बातें आप सभी के लिए रहती हैं, तो आज के कार्यक्रम में क्या खास बात रहने वाली है। कुछ खास बातें जो कि इतिहास से जुड़ी होती हैं वो तो रहती ही हैं, लेकिन कुछ खास जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं अक्सर उस पर हम नज़र नहीं दौड़ाते। मैं एक ही बात कहती हूँ दोस्तों कि हम सभी लोग जो हैं वो दूसरों की जिंदगियों में झांकना बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है पूरा समय उसमें लगा देते हैं, लेकिन मजाल है एक भी सेकंड अपनी जिंदगी में अपने भीतर झांकने के लिए हम निकाले। अपनी बात आती है तो हम कहते हैं समय ही नहीं है, लेकिन हाँ कई बार हम, अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम अपने बारे में अगर सोचते नहीं हैं तो लोग हमें स्वार्थी क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ बातों के लिए हम स्वार्थ दिखाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ मैं वाली बात नज़र आती है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें या जो भी सुख सुविधाएं वो सिर्फ हमारे लिए हों, हम उस पर जो है फ़ायदा उठाएं, ये करें वो करें, तो वहाँ हम स्वार्थपन जो है वो दिखा देते हैं। अपनी खुशी के लिए हम दूसरों को हर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, नज़रिया या सोचने का तरीका अलग अलग है, बातें एक जैसी हैं, लेकिन कहते हैं ना एक ही बात के 100 पहलू होते हैं अगर उसे ध्यान से गौर से देखा जाए। तो फिलहाल इन 100 पहलुओं की ओर हम ज़रूर जाएंगे और ये भी बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम में कौन सी ऐसी खास बात रहने वाली है। लेकिन फिलहाल 9:20 हो चुके हैं दोस्तों, तो रुचिका की बातों से हटकर थोड़ा सा समय है प्रादेशिक समाचारों का, अपने आसपास की कुछ खास जानकारियों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी की मुलाकात होगी आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: जगमोहन शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान निभा अहम भूमिका। नई दिल्ली के द्वारका में प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक में झलकी प्रदेश की समृद्ध विरासत। स्वास्थ्य मंत्री धनश्याम चांडल ने कहा, नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा। और चंद्रभागा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने जोबरंग में नए पुल की मांग दोहराई। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टेहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन और ITI मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा शामिल हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वहीं ITI मंडी के फिटर ट्रेड के अनुदेशक जगमोहन को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किन्नौर जिला के 6 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों से कुल 21 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन हुआ, जिसमें किन्नौर के 6 शिक्षक शामिल हैं। सम्मानित शिक्षकों में कोठी स्कूल के प्रवक्ता अजय कुमार, यांगपा 2 के किरण कुमार, कल्पा स्कूल की DPE राकेश कुमार, खदूरा स्कूल के JBT संजय कुमार नेगी, खवांगी के JBT इंद्र प्रकाश और खोंटा पांगी के JBT मनोज कुमार शामिल हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले इन शिक्षकों का सम्मान किन्नौर के लिए गर्व की बात है। शिक्षा विभाग ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सभी शिक्षकों को बधाई दी है। वर्ष 2008 में किन्नौर के शिक्षक हीरा सिंह नेगी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चंबा चलो चंबा अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक 2026 में चंबा के दूरदराज गांवों, अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल विशेषज्ञों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। सामाजिक संस्था नॉट ऑन मैप के सहयोग से जिला के विभिन्न अंचलों से आए होमस्टे संचालकों, कारीगरों और युवाओं के दल को इस विशाल मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। एक्सपो के दौरान जिला के 7 प्रमुख क्षेत्रों की समृद्ध विरासत और विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। इनमें खजियार और डलहौजी के प्राकृतिक वन क्षेत्र, पांगी और भरमौर की समृद्ध जनजातीय परंपराएं, ट्रैकिंग रूट्स और पौराणिक इतिहास शामिल रहे। इसके साथ ही साल वैली, तीसा और द्वाट महादेव की शांत ग्रामीण जीवन शैली, पारंपरिक खानपान और आध्यात्मिक परिवेश से आगंतुकों को रूबरू करवाया गया। इस एक्सपोजर विजिट में शामिल प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताते हुए जिला प्रशासन चंबा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और एक्ट संस्था का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है।
2: मेरा नाम वर्षा जरियाल है और हम जो है चंबा हिमाचल प्रदेश से आज दिल्ली आए हैं, जहाँ पे BLDM का हमारा इवेंट चला है। तो 3 दिन का इवेंट था, आज लास्ट दिन है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जिनसे हमें नई नई चीज़ें सीखी हैं और अपना भी हमने आइडियाज एक्सचेंज किए हैं, उनके आइडियाज हमने से लिए हैं और कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम जो है ऐसे ऐसे इवेंट्स में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले इतना बड़ा हमें और होप कि आगे भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहे। थैंक यू।
3: मेरा नाम मनोज कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आया हूँ और BLDM में आकर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा मंच था, देश विदेश से यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग जो है ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहुँचे हुए थे। जो हम यहाँ पर जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए आए थे तो सबका रुझान जो है ये इसी ओर था।
4: मिस्टिक विलेज के बारे में रीड कर रही थी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, क्योंकि ये होम स्टे है पर ये सिर्फ होम स्टे जो है वो सिर्फ आपके स्टे के बारे में या टूरिज्म तो प्रमोट कर ही रहा है बट उसके साथ साथ कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ के कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, कुजीन के बारे में पता चलेगा और एक बहुत ही होमली एनवायरनमेंट आपको मतलब मिलेगा जो है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब कुछ काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। आप जब इस तरीके के होम स्टेज और एक नॉट ऑन मैप भी है इनका एक और वेंचर, तो उसके थ्रू जब आप यहाँ जाते हो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप रुकते हैं तो आपको सिर्फ नेचर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता, उसके साथ साथ आपको उस रीजन और उस जियोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @ AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को

0: टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवा नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएं। डॉक्टर शांडिल कल सोलन विधानसभा क्षेत्र के जौणाजी में दो दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने और अपने परिवार के बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ड डयारक बुखार में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2 लाख, महिला व युवक मंडल भवन कनाह बजनाल के निर्माण के लिए 2 लाख, जौणाजी स्कूल से मार्ग तक एम्बुलेंस रोड के प्रारंभिक निर्माण के लिए भरोग गांव से कनाह बजनाल स्कूल तक मार्ग की मुरम्मत, डयारक बुखार में आंगनबाड़ी निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कल से किन्नौर जिला के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। जगत सिंह नेगी इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे तथा महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
3: जगत सिंह नेगी 7 सितंबर को देखांगपियो में 11 बजे ITDP के सम्मेलन कक्ष में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 8 सितंबर को जिला योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं 9 सितंबर को जिला सूत्रीय रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10 सितंबर को मंत्री लोक निर्माण विश्राम गृह देखांगपियो में कल्पा पूह और निचा ब्लॉक के अध्यक्षों एवं कार्यकारी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
2: लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ कल लाहौल के जोवरंग पुल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को जाना। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोवरंग, राशेल और रापे गांवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई बार पानी पुल के ऊपर तक पहुंच जाने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, राशन की व्यवस्था और किसानों को उनके उत्पाद बाजार तक ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद ठाकुर ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी से पर्याप्त ऊंचाई पर नया पुल बनाने की आवश्यकता जताई। रवि ठाकुर ने कहा कि करीब 3 वर्षों से समस्या सामने आने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाकर सुरक्षित और स्थायी पुल निर्माण की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। कृषि उपज विपणन समिति के अनुसार अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी हैं। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। मंडियों के साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला का शीर्षक है, मणिमहेश डल झील में महिलाओं के स्नान पर रोक, गौरीकुंड में ही मिलेगी अब सुविधा। पंजाब केसरी के शब्द हैं, अधिकारियों पर बरसी सांसद कंगना, कहा काम नहीं करना तो क्या तनख्वाह खाने आते हो। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कैग रिपोर्ट, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए की राशि खर्च नहीं कर पाया विभाग, अर्जित ब्याज के निर्धारित समय पर हस्तांतरण में भी देरी। दैनिक जागरण की खबर है, हिमाचल की केंद्रीय सहायता में 4वें वर्ष भी कटौती, वित्त आयोग के अनुदान में आई सबसे अधिक कमी। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, अनुबंध शिक्षकों को नियमित होने पर मिलेंगे पूरे सेवा लाभ, कोर्ट ने सरकार को 3 माह में भुगतान के दिए निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टिहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन और ITI मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान निभा रहा अहम भूमिका। नई दिल्ली के द्वारका में प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक में झलकी प्रदेश की समृद्ध विरासत। स्वास्थ्य मंत्री ने धनराम शांडिल ने कहा, नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा। और चंद्रभागा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने जोबरंग में नई पुल की मांग दोहराई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आज के इस बहुत ही प्यारे से सुबह के साथ दिन की शुरुआत आप सभी इस प्यारे से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आइए इस अपनी प्यारी से बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि जहाँ अपनों का साथ होता है वहाँ बातें भी कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ बातें होती हैं वहाँ प्यार भी कम नहीं होना चाहिए। रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है हम सभी की ज़िंदगी में। दोस्तों, इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया अक्सर उसकी हज़ार अच्छाइयों को भूलकर उसकी एक छोटी सी कमी पर नज़र टिकाती है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत बदलिए। जो लोग आपकी अच्छाई देखना चाहते हैं, उन्हें आपकी छोटी गलतियां भी इंसान होने का हिस्सा लगेंगी, और जिन्हें सिर्फ कमियां ढूंढनी है, उन्हें आपकी हजार खूबियों में भी एक कमी जरूर दिखाई देगी। इसलिए लोगों की नजर से नहीं, अपने कर्म और अपने दिल की सच्चाई से जिंदगी जीना सीखिए, क्योंकि आपने भी कभी महसूस किया है कि लोग आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा आपकी गलतियों को याद रखते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के ज़िंदगी की कहानी है, घर घर की कहानी है, लेकिन फिर भी हम इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और फिर दुनिया के नज़रिए से चलना शुरू कर देते हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, लेकिन इन सब बातों में हम एक बात भूल जाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, ये बात अक्सर हम भूल जाते हैं। तो इस बात को नज़र में रखिए और अपनी अहमियत को समझिए। अभी तो बहुत खास बातें आप सभी के साथ साझा होने वाली है। फिलहाल एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया सोनू निगम की आवाज़ में। और फिलहाल कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ शुरुआत कर रहे हैं आप सभी अपने दिन के। आज खैर रूटीन थोड़ी सी बिगड़ी सी होती है क्योंकि छुट्टी के दिन थोड़ा सा टाइम जो है ना वो हमारा गड़बड़ा सा जाता है, उठने का टाइम गड़बड़ा जाता है कि नहीं आज छुट्टी है थोड़ा आराम से उठेंगे, शांति से उठेंगे, है ना। क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहीं तो स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो फटाफट से खाना बनाना, ये करना वो करना, मतलब सारी रूटीन सुबह सुबह शुरू हो जाती है। लेकिन छुट्टी वाले दिन आराम आराम से, नहीं कोई बात नहीं, पूरा दिन आज का जो है वो अपना ही है। बिल्कुल दोस्तों, अपनों का साथ और अपना, तो बिल्कुल इस अपनेपन को और ज़्यादा बढ़ाना रिश्तों की खासियत है। लेकिन इसी खासियत के साथ कुछ खास बातें, तो बिल्कुल बात की थी शुरुआत में कि कार्यक्रम में कुछ खास बात जरूर रहेगी जिसके बारे में आप सभी के साथ बात करेंगे। जी दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास बात, खास करके बच्चों के भविष्य से जुड़ी बात। दोस्तों अक्सर आप यही सोचते होंगे कि बच्चों पर ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि आज के समय में अगर बच्चों की जिंदगी को समझना है ना तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है और बच्चों को समझना इतनी आसान बात बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, ऑनलाइन गेम है, डिजिटल पेमेंट है, पॉकेट मनी है। बच्चे 10-15 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक ऑनलाइन खर्च कर देते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बच्चे पैसे को सिर्फ खर्च करना जानते हैं या बचाना और सुरक्षित रखना भी जानते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर हर किसी के घर में, हर किसी के जो पेरेंट्स हैं, हर जो भी सभी पेरेंट्स हैं उनका बच्चों से ये सवाल होना बेहद ज़रूरी है। खुद से भी ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधाएँ दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या वो खर्च करने के साथ साथ सेविंग्स पे भी ध्यान देते हैं, सुरक्षित चीज़ों को समझना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी ज़रूर होती है, अपनेपन की, प्यार की और समय की। लेकिन फिर भी बच्चे उस चीज़ का एक मिसयूज़ कह सकते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं चीज़ों को, मतलब चाहे कितनी भी महंगी चीज़ें होंगी उनके लिए उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो तोड़ देंगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। अब हम कुछ लोअर मतलब की बात करें दोस्तों, जिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है 10 रुपए भी कमा पाना या ले पाना, तो उनके लिए तो 1 रुपए की चीज़ भी कहते हैं करोड़ों के समान होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे जहां उन्हें समझाया ही नहीं गया होता है, शायद वैसे हालात ही नहीं उनके सामने लाए गए कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, 0 की वैल्यू कितनी होती है, रुपया तो छोड़िए दोस्तों, 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये चीज़ें समझना बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को समझेंगे तभी वो जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना डट कर सकेंगे। तो आज की ये खास बातचीत बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चों से जुड़ी बातचीत आ जाती है तो वो खास अपने आप हो जाती है। लेकिन फिलहाल बातचीत के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत खास है, बहुत जरूरी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों सूर्यवंशम मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत सोनू निगम जसपिंदर नरोला की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों कुछ खास बातों के साथ कुछ खास जानकारियां भी हम सभी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आइए अपनी बातचीत का रुख जो है वो एक बहुत ही खास जानकारी की ओर करते हैं। दोस्तों डल झील मेले का शुभारंभ 16 सितंबर को महाआरती के साथ किया जाएगा। मेले के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को लघु सचिवालय धर्मशाला के कैबिनेट हॉल में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में मेले की तैयारियों विभिन्न व्यवस्थाओं तथा संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। दोस्तों उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेले से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं 15 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाए। तो दोस्तों कोई भी आयोजन जो है वो इतना आसान नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। जब भी किसी मेले का आयोजन, किसी भी एक बोलते हैं विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स रहते हैं, बहुत समय जो है वो भी रहता है तैयारियों के लिए, क्योंकि हर किसी को और ख़ास करके हम ये मेलों की और भंडारों की, जैसे मंदिर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, तो उन सभी की देखरेख, उन सभी की जो एक कहते हैं ना कि सुरक्षा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हर किसी को कोई दिक्कत ना हो।

0: तो ये सारी बातें एक कहते हैं ना कि छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप सभी की सेफ्टी के लिए, आप सभी की इस लगन के लिए, उत्साह के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि आप सभी लोग इन्जॉय कर सकें, अपनी ज़िंदगी का जो है एक थोड़ा सा रुख जो है वो बदल सकें। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुँचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
1: बेस्ट गिफ्ट

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं कि आखिर बच्चे जो आज के समय में ये सुख सुविधाएं जितनी भी हैं, या आजकल पहले पैसों की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत आर्थिक जो हमारी कह सकते हैं कि कंडीशन होती थी हर किसी की एक जैसी नहीं होती थी, तो बहुत मुश्किल दौर से जो था वो सबको गुजरना पड़ता था। और वहाँ बच्चों को पता होता था कि नहीं, हमें एक छोटी सी चीज़ के लिए कितने एफर्ट्स लगाने हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें कोई चीज़ मिल पाएगी। लेकिन अब जो है, अब थोड़े से हालात चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स चाहे मदर हों चाहे फादर हों, दोनों वर्किंग हैं घर में और भी जो है वो काम करते होंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी भी मुश्किलों से भरी नहीं होती है। मतलब कुछ कुछ घरों में हम बोल सकते हैं, लेकिन हर कहीं जो है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो जो हम वर्किंग में हैं, हर एक फैसिलिटी जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके बिना बोले उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ उनका एक तो पेशेंस लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो नहीं बन पाता कि उन्हें किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़े। तभी तो वो एग्रेसिव से हो जाते हैं कि जब कोई चीज़ ना मिले तो वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। चीज़ों की अहमियत समझना बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जहां बच्चे पैसे खर्च करने की ओर भाग रहे हैं, वहीं क्या वो पैसे सेव करना भी जानते हैं या नहीं जानते। और दोस्तों हम खास करके बात कर रहे थे कि गेम्स में आजकल बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं। वाकई में इन गेम्स से बच्चों को क्या मिलता है? जो फिज़िकल गेम्स हैं उससे तो बच्चे के जो फिज़िकल हेल्थ है वो एक तरह से मेंटेन रहती है। जब वो बाहर आउटडोर वाली गेम्स या घर पे बैठकर भी अगर हम गेम्स खेले सबके साथ, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी गेम है, मतलब वहाँ एक अपनों का साथ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, कैसे हमें एडजस्ट करना है, कैसे हमें किसी को कोऑपरेट करना है, किस सिचुएशन में कैसे खुद को संभालना है। ये सारी चीज़ें इन गेम्स के ज़रिए भी बच्चों में डेवलप होती हैं, बनती हैं। बाहर की बात करें तो बाहर भी वो अलग अलग जो है बच्चों के साथ खेलते हैं, जब वो स्कूल में या अपने गाँव में, गाँव के बच्चों का, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के बच्चों के साथ फिजिकली डील करते हैं तो उन्हें आगे चलकर मुश्किल नहीं आती। लेकिन जब हम फ़ोन में गेम्स खेल रहे हैं तो वहाँ हम पैसे उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक फोकस है वो सिर्फ उस गेम्स के अंडर है। अगर एकदम से हमसे फ़ोन ले लिया जाए, गेम्स के लिए मना कर दिया जाए, तो बच्चे चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा एकदम से आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें इसमें डिफरेंस करना बेहद ज़रूरी है। यदि हम डिफरेंस समझ पाएँ, कर पाएँ, तो शायद हम बच्चों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उनके लिए वो बचपन वो वापस लाना होगा, जो मिट्टी से खेलना, पानी से खेलना, जो कि आज के समय में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कपड़े गंदे हो गए, अब कपड़े कौन धुलेगा, मिट्टी वाले कपड़े, मिट्टी वाली चप्पल तक अंदर आ जाए तब बवाल हो जाता है, तो मिट्टी वाले कपड़े तो सोचिए फिर। काम से हम इतना टलते हैं, इतना टलते हैं ना दोस्तों, हमने अपने शरीर को इतना आलसी बना लिया है कि बीमारियाँ झेल लेंगे लेकिन मजाल है थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा वो इंजॉय कर लें, नहीं खुद भी नहीं करेंगे, बच्चों को भी नहीं करने देंगे। तो उनका बचपन भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं, उनकी जो एक लाइफ का सर्कल है वो भी हम कहीं ना कहीं उसे बंद कर रहे हैं। तभी तो आज के समय में बच्चे राह से भटकते जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को उनकी भावनाओं को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं कभी, या समय नहीं दिया। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे सामने की हैं, हमारे आसपास की हैं। खैर, ये तो बातें हैं जिंदगी से जुड़ी हुई और बहुत खास हैं। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: यार हमें कुछ और दे।

दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और ट्यून किया है आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बात कर रहे हैं दोस्तों कि बच्चों के पास आज के समय में हर एक फैसिलिटी बच्चे पेरेंट्स जो है वो करवाना एक ज़रूरत सी समझते हैं कि चाहे वो कुछ भी करें लेकिन उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। और अक्सर ये बात होती है कि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमने बहुत सारी मुश्किलें फेस की हैं तो हमारे बच्चे उस दौर से ना गुजरें, तो उसके चलते वो कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि बच्चे उस चीज़ की अहमियत ही भूल जाते हैं कि पेरेंट्स कितनी मेहनत करके उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। खैर, इसी के साथ दोस्तों एक बहुत ही खास जानकारी की ओर आप सभी को लेकर जाना चाहूँगी। साइबर ठग जो है वो आए दिन आप सभी जानते हैं कि नए नए स्कीम्स जो है वो अपना रहे हैं, नए नए ऐसी तरकीबें निकाल रहे हैं जिससे लोगों को अपने जाल में फंसाया जाए। तो दोस्तों, ऐसे में ही व्हाट्सएप पर लॉटरी का झांसा देकर जो है अब एक नई टेक्निक उन्होंने अपनाई है जिससे कि लोगों को वो ठगी का शिकार बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अक्सर ये जो हम पैसों की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब बच्चों को इसी बात को अगर मैं बच्चों से रिलेट करूं इसी जानकारी को, तो जब पेरेंट्स बच्चों को हर एक सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं, छोटे होते ही वो उन्हें जो है पैसों की कोई कमी नहीं होने देते, हर एक चीज़ को एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश में वो बच्चों को उस हद तक लेकर जाते हैं, लेकिन एकदम से अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बच्चे उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी बातें सामने लगें कि नहीं बच्चों को अब ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा कम किया जाए, तो एकदम से जब आप वहाँ से पीछे हटते हैं तो बच्चों में जो एक हैबिट बन चुकी है, क्योंकि उन्हें आदत सी बन चुकी है कि पैसों की कमी नहीं होती है, तो उन्हें वो आदत नहीं है कि कम पैसों में कैसे रहा जाता है, कैसे खुद को एडजस्ट किया जाता है, कैसे मेंटेन की जाती हैं चीज़ें, तो वो नई नई टेक्निक्स वो भी अपनाते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ही जैसे इस तरह से कि कोई लॉटरी का झांसा दिया जाएगा या गेम्स खेलकर उन्हें ऐसा बताया जाएगा कि आप इतने जो है हमें हमारे लिए इतना काम करोगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे, तो वो वहाँ पर बिना सोचे समझे जो है उस साइट पे चले जाते हैं बिना उस साइट की पूरी इन्फॉर्मेशन लिए, क्योंकि बच्चे हैं, बचपना है, तो वो समझ उनमें शायद अभी तक नहीं होती है, तो उसी के चलते वो पेरेंट्स के पैसे बहुत ज़्यादा कई बार धोखे में उड़ा देते हैं या तो खुद किसी घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल ब्लैकमेल करके भी एक बार बच्चे को जाल में फंसा लिया तो वो फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं उन्हें इतना सतर्क होना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी साइट से अगर आप चाहे गेम्स के जरिए या शॉपिंग के जरिए किसी भी तरीके से पैसे के लालच में तो बिल्कुल ना आए ऑफर्स के चलते या किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो ठगी का मामले है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आए दिन नई नई तरकीबें जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। तो कभी भी अपने एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मिसयूज़ कभी किसी को करने ना दें, अपनी भोलेपन का फ़ायदा किसी को ना उठाने दें, आप इतने मैच्योर हैं, इतने जो हैं मतलब कैपेबल हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अगर कुछ गलत हो भी जाता है जाने अनजाने में तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएँ, जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपका परिवार भी आपका साथ देगा और समाज भी आपका साथ देगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास बातचीत है और बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपनी ज़िंदगी या बच्चों की ज़िंदगी को रिलेट कर पाएंगे और सतर्कता की ओर उन्हें प्रेरित कर पाएंगे। तो फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

तो सही क्या अनुदुष्मलव तो मेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका के कुछ खास बातों के साथ। जी दोस्तों, तो आइए उन्हीं बातों की और फिर से रुक करते हैं और बात कर रहे हैं दोस्तों पैसों की। और पैसों की बात आती है ना तो जो आंखों पे लालच की पट्टी बंधी होती है ना तो ऐसे एकदम से वो चरमरा से जाती है, समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। और जब हमें कोई ऐसा ऑफर मिल जाता है तब तो हम जैसे कुछ दिखता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता, बस पैसा ही पैसा दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये लालच की पट्टी कुछ देर के लिए ही अच्छी लगती है, जब हम हमेशा के लिए इसे ओढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किलें घर कर जाती हैं। लेकिन बच्चों की बात करें तो देखिए दोस्तों, पैसे की समझ कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो 18 साल की उम्र में अचानक से आ जाए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं, अभी बच्चा है कोई बात नहीं, लेने दीजिए महंगी चीजें या तोड़ने दीजिए, टूट गई तो कोई बात नहीं फिर से आ जाएगी। लेकिन इंसान जरूरी है, चीजों का क्या है। बात सही है, ये बात गलत नहीं है कि चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इंसान एक बार अगर दुनिया से चले गए तो उन्हें दोबारा नहीं हम वापस ला सकते। लेकिन इसके चलते हम ये चीजें नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक बच्चे की जिंदगी को आप बिगाड़ने की ओर जो है अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप बच्चा करते करते उसके आने वाले समय को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हर समय पेरेंट्स बच्चों के साथ रहें ये जरूरी नहीं है, एक न एक दिन उन्हें भी जिम्मेदारियां संभालनी है, लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये सीख जो है ना दोस्तों पैसों की बचत की, ये बचपन से शुरू होती है। पहले जमाने में घरों में गुल्लक हुआ करती थी, बच्चे के दादा जो है या माता पिता कुछ पैसे मिले तो उसमें से कुछ पैसे गुल्लक में डाल दिए, फिर महीने के अंत में गुल्लक खुलती थी और बच्चा बड़े उत्साह से अपने पैसे गिनता था। आज गुल्लक की जगह मोबाइल वॉलेट और डिजिटल पेमेंट ने ले ली है। इसलिए आज के बच्चों को हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि बेटा पैसे बचाओ, बल्कि ये भी बताना है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है और उसे सुरक्षित कैसे रखना है। तो सो मान लीजिए किसी बच्चे को महीने में 2,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, अगर पूरे 2,000 रुपए महीने भर में खत्म हो गए तो महीने के आखिर में क्या बचेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर बच्चा पहले ही तय कर ले कि 1,200 रुपए जरूरी और पसंद की चीजों पर खर्च करूंगा, 500 रुपए बचत के लिए, 300 रुपए भविष्य के किसी लक्ष्य के लिए, क्योंकि हालात कभी भी किसी भी तरह से हमारे सामने आ सकते हैं, जरूरत कभी भी किसी भी तरह से पड़ सकती है, तो हमें थोड़ा सा एडवांस में चलकर भी सोचना चाहिए, तो उसे धीरे धीरे पैसे को व्यवस्थित करना आ जाएगा। तो यही है वित्तीय अनुशासन। बच्चे को ये समझाना जरूरी है हर पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता, चाहे आपके पास खुली फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक प्लानिंग के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि इन सब बातों के चलते हम जिंदगी एंजॉय करना छोड़ दें, एंजॉय छोटी छोटी खुशियों के साथ भी हो सकता है, छोटी छोटी बचत के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, बेफिजूल के खर्चे हमें थोड़ा सोच समझ के करने चाहिए, तभी हम लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, उसे सही तरीके से चला सकते हैं। तो फिलहाल आइए, फिलहाल जो है कार्यक्रम को भी हमें बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्यार से चलाना है, तो एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम में बेहद खास बातचीत जो है हम कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चों को ये चीज़ें समझाना, पैसे की बचत या किस तरह से हमें पैसे खर्च करने चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अक्सर दोस्तों अभी ये जो गीत सुना ना आपने कि जाना है तुझे पिया के अंगना, तो एक लड़की की बात करें, लड़के की भी हम बात करें क्योंकि शादी तो दोनों की ही होनी होती है, तो जब बच्चों को आदत होती है एक तरह से बिना किसी डर, बिना किसी रोक टोक के पैसा खर्च करने की, जो भी उन्हें पॉकेट मनी मिल रही है या जैसे भी वो पैसे मांग रहे हैं उन्हें उतने पैसे दिए जा रहे हैं और वो बिना कुछ बताए, बिना किसी चीज़ को एक्सप्लेन किए वो खुला खर्च एक तरह से बोल सकते हैं कि कर रहे हैं, तो जैसे ही एकदम से एक नई जिंदगी की शुरुआत, शादी के बाद एक नई जिंदगी होती है दोस्तों, किसी अननोन पर्सन के साथ या कुछ जान पहचान के लोगों के साथ भी अगर हम जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो एक नई शुरुआत ही है। बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, एक सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं नए, है ना, पुराने छोड़ के नए रिश्ते, पुराने छोड़े नहीं जाते, पुराने भी साथ में लेकर चलते हैं लेकिन नए रिश्तों को भी हमें साथ लेकर चलना होता है और एक नई एक फैमिली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहां हम बात करें कि पहले चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, पहले उन्हें आदत होती है कि सिर्फ अपने लिए खर्च करना है, खुली मस्ती करनी है, पैसे उड़ाने हैं चाहे जैसे मर्जी, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, फैमिली को संभालना है, अपने साथ जो इंसान जुड़ा है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, तो वहाँ पे फिर अगर वो आदत नहीं है सेविंग की या उन चीज़ों को समझने की, तो वो बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाता है, वो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हिलने ढुलने से लग जाती है और वही नोक झोंक जो है फिर रिश्ते की कमज़ोरी बन जाती है। जी दोस्तों, लड़कियों की बात करूं तो कहते हैं ना एक महिला जो है वो घर को संवार भी सकती है और अगर वो चाहे तो वो घर को तोड़ भी सकती है, कहा जाता है ऐसा, एक कहावत है लेकिन खैर जानते हैं आप सभी बहुत अच्छे से। तो जब उन्हें ये हैबिट होगी शुरू से पैसे की

0: बिना बोले मेरे पेरेंट्स मेरे हाथों में चीज़ें लाकर रख देते थे। अब तो मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, आपके आगे झुकना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें वो फिर सामने आ जाती हैं। तो ये चीज़ें समझना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं शुरुआत कहते हैं ना घर से ही होती है, तो शुरुआत पे ही गौर करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर गौर कीजिए और इन बातों पे ध्यान दीजिए। फिलहाल हम गौर करते हैं फिर से एक प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

तो सुगीत संगीत और बातचीत का ये सिलसिला आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का समय 9 बजे से लेकर 11 बजे

बजे तक का है, तो अभी समय हमारे पास बहुत है, बातें बहुत सारी हैं आप सभी के साथ करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जहां हम अपने आसपास की कुछ खास बातों की बात कर रहे हैं, तो वहीं आप सभी ने रक्षाबंधन के दिन के बाद से या रक्षाबंधन के दिन से ही बात करें तो गोगा महाराज के वार भी आप सभी ने, मतलब आप सभी जानते हैं कि जब धार्मिकता की बात आती है, पूजा की बात आती है, तो समय समय के साथ जैसे जैसे रिचुअल्स हैं हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों घरों में साल में एक ऐसा दिन आता है जब परिवार कोयले और दूध से दीवार पर सांप का चित्र बनाते हैं, कच्चा दूध और बाजरा चढ़ाते हैं और 1000 साल पहले मरे हुए योद्धा के नाम पर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। और वो दिन है गोगा नवमी का, जो कि आपने कल 5 सितंबर 2026 को मनाया। जी दोस्तों, गोगा जी महान पौराणिक देव मंडल के देवता नहीं, वो एक लोक देवता हैं। चुरू की रेत से एक चौहान राजपूत योद्धा संत, फिर भी उत्तरी भारत के गांव में उनका नाम कई शास्त्रीय देवताओं से अधिक बार लिया जाता है। दोस्तों, गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा में हुआ था, जो आज राजस्थान के चुरू जिले में है। चौहान राजपूत शासक जेवर सिंह और उनकी रानी बाछल देवी के यहां परंपरा के अनुसार रानी कई वर्षों तक निसंतान थी, जब तक कि उन्हें गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने उन्हें एक पवित्र गुग्गल फल दिया और उस फल आशीर्वाद से बच्चे का नाम गोगा या गुग्गा पड़ा। जी दोस्तों, बचपन से ही उन्हें सर्पों पर अधिकार प्राप्त था। नाथ परंपरा ने उन्हें गोरखनाथ का शिष्य बनाया और इसी वंश से नागलोक पर उनकी महारत का वर्णन किया गया। एक सिद्ध जो सांपों को बुला सकता था, शांत कर सकता था और उन पर आज्ञा चला सकता था और इसलिए उनके विष का इलाज कर सकता था। कहानियों में बताया गया है दोस्तों कि वे एक नीले घोड़े पर हाथ में भाला लेकर मवेशियों और ग्रामीणों की रक्षा के लिए निकलते थे और गोगमेड़ी वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में एक अंतिम युद्ध में पृथ्वी घुल गई और उन्हें अपने में समा लिया ताकि उन्हें अपना विश्वास त्यागना ना पड़े। उत्तरी भारत के धार्मिक परिदृश्य में गोगा जी को वास्तव में असाधारण बनाने वाली बात ये है, उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। हिंदू उन्हें गोगा जी महाराज कहते हैं और मुसलमान उन्हें जाहर पीर कहते हैं। गोगमेड़ी के मंदिर में दोनों समुदाय ने सदियों से एक ही दहलीज पर चढ़ावा चढ़ाया। एक जीवित अनुस्मारक की इस भूमि में भक्ति ने शायद ही कभी उन सीमाओं का सम्मान किया हो जो बाद में इसके चारों ओर खींची गई थी। दोस्तों, गोगा नवमी पर गोगा जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, नाग देवता, सर्प देवता की पूजा उनके साथ की जाती है। सनातन धर्म में सर्प केवल भय का प्राणी नहीं रहा, नाग प्राचीन शक्तिशाली जीव है। शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं और भगवान शिव अपने गले में वासुकी धारण करते हैं। एक किसान परिवार के लिए सांप एक दैनिक भौतिक वास्तविकता है। ये खेत में अनाज भंडार में दहलीज के नीचे रहता है। इसकी पूजा करना, इसके साथ शांति स्थापित करना, गोगा जी परिवार और उस खतरे के बीच खड़े हैं। वो मध्यस्थ जो सर्प को अपना विष रोकने का आदेश दे सकते हैं। यही कारण है कि भक्त गोगा नवमी को काल सर्प दोष और कुंडली में नाग दोष से मुक्ति से भी जोड़ते हैं और यही कारण है कि सांप से संबंधित भय या अस्पष्ट बीमारी का इतिहास रखने वाले परिवार इस दिन का विशेष गंभीरता से मनाते हैं। जी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि 10 दिन जो है ये मेले चलते हैं, बार चलते हैं उनके, और लोग दूर दूर से जो है मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और गोगा महाराज जी के जो एक तरह से कह सकते हैं शिष्य चेले जो होते हैं वो घर घर जाकर जो है उन्हें अपने दर्शन देते हैं और घर घर जाकर जो है अपनी जो कथा है वो सुनाते हैं। जी, तो आइए हम भी इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

तो सो इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे थे दोस्तों गुग्गा महाराज जी की। तो बिल्कुल दूर दूर से लोग जो है ये दूर दूर से आते हैं और यहाँ कहते हैं ना, जब मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मन की आस्था, श्रद्धा और भक्ति अगर है तो सब कुछ पॉसिबल है। और कहते हैं ना, भगवान हमेशा साथ होते हैं दोस्तों, बस मन से उन्हें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत होती है। और जो ये हमारे आँखों पे पैसों का लालच या ये जो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ गलत करने की राह पर हम भटक रहे हैं, किसी के साथ भी हम जो है अन्याय कर रहे हैं, किसी को भी हम नीचा दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि वहाँ हमारी सारी जो चालबाजियाँ हैं, सारी जो गलत जो बिहेवियर है, जो हमारे कर्म हैं, वो झुक जाते हैं। और वो एक ही है दोस्तों कि भगवान के दर पे। तो ये श्रद्धा है, भक्ति है हम सभी की, जो हम 10 दिन इस को जो है एक त्यौहार की तरह मनाते हैं और घर घर जाकर जो है उनका जो वेलकम किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर चीज़ जो है हर लोगों तक, सभी तक जो है वो पहुंच रही है, तो दूर दूर तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, जानते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए। और उस धार्मिकता से जो है कहीं ना कहीं शायद हमारे मन में जो गलत ख्याल या गलत विचार चलते रहते हैं उनसे हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल सके। तो आपने जो ये एक कहा, जो सुना कि गुग्गा महाराज जी का जन्म किस तरह से हुआ, ये कैसे हुआ, अभी हम इस भजन के द्वारा भी सुनेंगे दोस्तों किस तरह से जो है गुग्गा महाराज जी का भजन आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है।

जी दोस्तों, तो गुगा महाराज जी की कथा वैसे तो बहुत लंबी है, तो आप सभी इसे सुन भी सकते हैं और इसकी धार्मिकता को समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, हमें अक्सर आज के बच्चों को इन सब चीज़ों का क्यों पता नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों के आशीर्वाद की। जी दोस्तों, वही बताते हैं ना, हर एक चीज़ हर एक कहानियों के माध्यम से जो है हमें ज़िंदगी से रूबरू करवाते हैं। तो अहमियत हमें यहाँ समझ आती है कि बड़ों का साथ क्यों जरूरी है आखिर परिवार में। तो बिल्कुल बात कर रहे हैं दोस्तों इसी के साथ आज के कार्यक्रम में कि आखिर जो पैसों की बचत या पैसों का खर्च है, बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों बात कर रहे हैं बैंक की, तो बच्चों को बैंक ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आजकल पेरेंट्स का क्या होता है कि खुद ही सारी चीज़ें कर देनी, बच्चों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, कि कहीं उन्हें जाना ना पड़े, तो इसलिए वो हर काम खुद ही कर देते हैं। लेकिन उन्हें समझाना बेहद ज़रूरी है, उन्हें बताइए कि पैसा सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाला नंबर नहीं है, पैसा बैंक में कैसे जमा होता है, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, पैसा कब निकाला जाता है, बचत खाते और दूसरी बचत योजनाओं में क्या अंतर है, माता पिता की निगरानी में किशोर को छोटी छोटी वित्तीय जिम्मेदारियां देना उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जी दोस्तों, छोटी छोटी सी चीज़ें ना कई बार हमें बहुत बड़ी एक उपलब्धियों तक लेकर जाती हैं। आजकल बच्चा कहता है कि पापा 100 रुपये भेज दो, और कुछ ही सेकेंड में पैसे मोबाइल में भेज दिए जाते हैं। लेकिन क्या बच्चे को पता है कि UPI पिन क्या है, OTP क्या है, फर्जी लिंक क्या होता है, स्कैम कॉल कैसे पहचानी जाती है? अगर नहीं तो अब बताने का समय है। जी दोस्तों, OTP किसी को नहीं बताना होता है, ये आप सभी जानते हैं। खास करके ये बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो ज़्यादा फ़ोन के टच में नहीं रहते या रहते हैं या बहुत सारी बातों से कहीं ना कहीं दूर हैं, तो OTP हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, UPI पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बैंक की जानकारी दोस्तों के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए, अनजान लिंक पर क्लिक करके भुगतान बिल्कुल ना करें, और सबसे ज़रूरी, अगर कभी गलती से पैसा गलत जगह चला जाए या ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो डर कर बात छिपानी नहीं चाहिए, तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें। क्योंकि अक्सर बच्चे जब घर पे नहीं बताते हैं और वो अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, और वो लोग जो है उन्हें और ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, और फिर वो बच्चे डर कर कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या कुछ और ऐसी गलत चीज़ें, चोरी करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी के साथ मारपीट, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों गलत की शुरुआत जो है इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों से होती है। तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, बच्चों को भी ध्यान रखना है, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो डरे नहीं। आज का समय बहुत फॉरवर्ड है, बहुत मॉडर्न है, हर चीज़ आपके हाथों में अवेलेबल है। जिस तरह से आप फ़ोन चला रहे हैं तो उसी तरह से फैसिलिटी वहाँ भी आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए, सतर्कता आप में होनी बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, और बातचीत के साथ साथ मनोरंजन की ओर रुख करते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैसों की, और जहां पैसों की बात आ जाती है तो सारे कई बार रिश्ते तक टूट जाते हैं, इतनी मतलब पैसे की वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों हम खास करके बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अक्सर जो हम गेमिंग की बात कर रहे थे तो गेमिंग में क्या होता है कि कई बार बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसका जो एक स्टार्टअप है जिसमें एंट्री लेना है वो फ्री होती है, कुछ गेम्स में नहीं भी होती होगी लेकिन कुछ गेम्स में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो गेम्स खेलना शुरू करते हैं तो उसके आगे जो नए लेवल्स के लिए, नए फीचर्स के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए 50, 100 या 20 इस तरह से जो है वो पैसे कर मांगते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, 50 रुपये तो हैं, 100 रुपये ही तो हैं, 100 रुपये का आजकल क्या ही आता है, आज की डेट में क्या ही है 100 रुपये की वैल्यू। लेकिन समझने वालों के लिए 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत है दोस्तों, यही बात हमेशा दिमाग में रखिए। तो ये 100-150 करते करते सोचिए, बच्चा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक दिन गेम खेल रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन 50 रुपये दे भी दिए तो क्या हो गया। ये सालों तक अगर गेम्स चल रही हैं तो सोचिए अगर दिन के 100-150 जा रहे हैं तो वो सालों में कितने हो जाएंगे, तो आप कितने पैसे जो है वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ गेम के लिए। और उससे मिल क्या रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कोई उसमें एक तो टाइम की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है। लेकिन हाँ, एकदम से अगर आप बच्चे को बोलोगे कि फोन छोड़ दें तो वो फिर चिड़चिड़ापन उनमें आ जाएगा, एकदम से वो एग्रेसिव से हो जाएंगे और वही चीज़ें तोड़फोड़ करने शुरू कर देंगे कि आपके लिए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, आपके लिए पैसों की वैल्यू है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिर हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। फिर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हमारे लिए तो बच्चे ज़रूरी हैं, पैसों का क्या है, पैसे तो हम इन्हीं के लिए कमा रहे हैं, उड़ा भी देंगे तो क्या हो गया। हमें यहाँ पे बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि एक लिमिट तक, यहाँ पे आपको इतनी लिमिट में इतने पैसे खर्च करने हैं। चलो माना कि आप गेम्स पे लगा रहे हो तो इतनी लिमिट तक जाना है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। वहाँ से बच्चे में सेल्फ कंट्रोल की जो है ना एक भावना वो उजागर होती है, वो बनती है, तो वो आगे जाके खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं, कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए, कैसे सिचुएशन में खुद को संभाला जाए, कैसी भी सिचुएशन हो तो हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में हमने बहुत ही खास बातचीत ये जो है मैंने आपके साथ साझा की है, और बातें अगर करने लगे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन क्या करें, समय की पाबंदियां जो हैं दोस्तों रोक देती हैं, तो थोड़ा सा हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, करना भी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो आज का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र आप सभी ने इंजॉय किया दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो अब धीरे धीरे समय हो रहा है आप सभी से दूर जाने का, तो दीजिए अनुमति और फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: शादी हुई।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: डॉलर।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: अरे गोरिया प्लास्टिक कहाँ गई? आकर गोरिया, आकर आ आ।
1: गोरिया,
2: गोरिया।
0: आकर, आकर,
2: आकर गोरिया,
1: गोरिया,
2: गोरिया आकर आ,
1: गोरिया।
3: गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए। प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और इस हफ्ते भी हर हफ्ते की तरह हम एक बड़ा ही नायाब एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, और हमें बेहद खुशी है कि आपको हमारे ये एपिसोड्स बहुत पसंद आ रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बड़े ही अनोखे गायक, बड़े जाने माने फनकार कुमार शानू के बारे में। भाई कुमार शानू साहब का नाम कुमार शानू कैसे पड़ा ये तो मैं आपके साथ बांटूंगा ही, और साथ ही शानू दा के बड़े ही अनोखे गाने भी आप सुनेंगे, और इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ बांटूंगा सिर्फ सारे गमा वीकेंड क्लासिक पर। और अभी 1942 अ लव स्टोरी से रूठ ना जाना तुमसे कहूं तो, सारे गमा वीकेंड क्लासिक।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और इस हफ्ते इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कुमार शानू की। जी हाँ, शानू दा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। 20 अक्टूबर सन 1957 में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका नाम कुमार शानू कैसे पड़ा, इनका असली नाम क्या है, जरा ये दास्तां आपके साथ बांटता हूँ। देखिए, ये एक बड़े ही संगीतमय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका नाम दरअसल रहा केदारनाथ भट्टाचार्य। जी, केदारनाथ भट्टाचार्य इनका नाम रहा, लेकिन जैसे कि हर परिवार में होता है और चाहने वाले जो हैं एक अलग नाम रख देते हैं, तो इनका नाम रखा गया कुमार शानू। और कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा देंगे। जी हाँ, एक ही दिन में 28 गाने एक साथ ये रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये हुआ था सन 1993 में। तो केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कि कुमार शानू की जिंदगी से जुड़ी और भी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ जरूर बांटी जाएंगी, लेकिन अभी कहो ना प्यार है से ये जरा गाना हम सुनते हैं सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और कुमार शानू स्पेशल आप सुन रहे हैं। शानू दा के बड़े ही अनोखे गाने आपके सामने मैं जरूर पेश कर रहा हूं, लेकिन साथ ही इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां भी आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि इनका नाम रहा केदारनाथ भट्टाचार्य, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इनके वालिद साहब यानी कि इनके पिताजी पशुपति भट्टाचार्य खुद एक बड़े अच्छे गायक और बड़े ही जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर रहे। और शानुदा के साथ इनकी बड़ी बहन को भी इन्होंने ट्रेनिंग दी और दमदम इलाके में रहा करते थे कोलकाता के। हाँ, और वहाँ पे जो है शानुदा ने अपने पिता से संगीत की विधिवत जिसे कहते हैं कि भाई शिक्षा ली, और उसके बाद इन्हें लगा कि भाई मैं गायक तो बन गया हूँ और पिताजी ने तबला भी सिखाया है। जी हाँ, ये बतौर

तबला प्लेयर पहले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक कॉमर्स की डिग्री ली। लंबा अरसा लगा शानुदा को शानुदा बनने में, और फिर स्टेज पे परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी 1979 में। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि ये कई रेस्टोरेंट्स में भी गाया करते थे कलकत्ता के, और तब तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर ये लड़का लिविंग लेजेंड बन जाएगा। जी, इस तरह से कुमार हमारे कुमार शानू की जो है शुरुआत हुई, और फिर तो इतिहास रच दिया। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तानें शानुदा की ज़िंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटी जाएंगी, और अभी एक बेहतरीन गाना जो है मैं चाहता हूँ पहले इसे सुने, फिर आगे की दास्तान सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं और कुमार सानू स्पेशल आप सुन रहे हैं। शानदार की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन दास्तानें आपके साथ बांट रहा हूं और साथ ही कुमार सानू के बड़े अनोखे गाने आप सुन रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इनका नाम तो बड़ा अच्छा रखा, इनके पिताजी पशुपति भट्टाचार्य ने केदारनाथ भट्टाचार्य। अब केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू किस तरह से बने, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ दरअसल यूं कि जब इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और महान गजल गायक जगजीत सिंह साहब ने इनका तारुफ करवाया संगीतकार जोड़ी, महान संगीतकार जोड़ी यूं कहूं, कल्याण जी आनंद जी से, तब आनंद जी भाई को लगा कि यार ये जो है लड़का, इसका जो गाने का अंदाज है बड़ा किशोर कुमार से मिलता है। तो इन्हें कहा गया कि भाई अपना नाम केदारनाथ से ज़रा तुम कुछ और रख लो, और इनका नाम तब रखा गया कुमार सानू। कोई नहीं जानता था कि कुमार सानू का नाम जो है दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। इस तरह से केदारनाथ भट्टाचार्य से ये बने कुमार सानू। लेकिन ये बात हैरान करेगी आपको कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके साथ इन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर शुरुआत की, वो भी कहानी आपके साथ जरूर बांटी जाएगी, वो फिल्मी में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सानू दा की मधुर आवाज में ये गाना सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

तमा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और कुमार शानू स्पेशल सुन रहे हैं। शानूदा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन दास्तानें आपके साथ बांटी जा रही हैं, तो जरा इस तरफ रुख करें जहां पता चलता है कि शानूदा ने सन 1986 में बतौर प्लेबैक सिंगर शुरुआत की। इनकी वो फिल्म रही तीन कन्या, जो कि एक बांग्लादेशी फिल्म थी, और उसके बाद महान सिंगर और महान कंपोजर जगजीत सिंह साहब ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी आवाज बेहतरीन है, क्यों नहीं तुम मेरी फिल्म आंधियां के लिए गाना गाते। 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई और फिर इनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से हो गया कुमार शानू। ये दास्तां तो मैंने आपके साथ बांटी है, लेकिन 1990 में एक आई फिल्म आशिकी, जिसके बाद कुमार शानू ने पलट के नहीं देखा। नदीम श्रवण साहब ने उसको संगीत दिया था और फिर तो इतिहास रच दिया गया जी। ये कमाल रहता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हर किरदार पे लिखा है निभाने वाले का नाम, और हर गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। शानूदा ने इतिहास रचे, इनके फैन क्लब्स बने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और आज की तारीख में हम इन्हें लिविंग लेजेंड कहते हैं। क्यों ना कहें साहब, इनकी आवाज़ ही बड़ी अनोखी है और अनोखी रहेगी। ये सारी दास्तानें आज आपके साथ बांटी हैं और अगले हफ्ते कुछ और बड़ी अनोखी कहानियां आपके साथ बांटी जाएंगी। ये सब आप तक पहुंचेगा सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर, गोरिया गोरिया आकर, आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो
3: एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे? सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे? सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाए, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

मतलब 2 MHz पर ए तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दी शुरुआत जड़े से यहाँ करी थी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी होने न या जुड़ी होने न या इंतजार जड़े से करा दोने न कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न समय दी और अगर नज़र दौड़ाइए तो 2:02 कार्यक्रम च होइया न कने इसी कन्ने दिने दी और चलदे न अज क्या दिन है क्या दिन आ के ते दे उपर नज़र दौड़ाना भी जरूरी है। दिने दी गल करिए तो अज संडे दा दिन तो हाँ खूब इंजॉय करा दे होने न कने 6 सितंबर 2026 दी अहां गल करिए तो ये जड़ा अजकना दिन है से तो हाँ फुल ऑन इंजॉय जड़ा से करा दे होने न इसी इंजॉय करने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाहां करने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जड़ा अहां दा नंबर है पहले से तो हाँ तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तो हाँ तक पहुँचाऊंगा ताई तो हाँ इस कार्यक्रम च अहां कन्ने जुड़ी सकते कने अहां कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते तो नंबर है 7018117091 नंबर तो हाँ तक पहुँचाई था है कने उना तो हाँ जो लेकर चल रहे न गीत और कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कन्ने

श्रोताओं, तुम सारे सुनिया ये गीत ये शुरुआत तो जरूर हाँ कार्यक्रम की जड़ा शुरुआत है से इस गीत कन्नै कीती है। कन्नै तो हाँ सारे जो पसंद भी जरूर आया होना है। कन्नै इसी कन्नै अज कने दिनें की गल करिए संडे वाला दिन है तो जरूर संडे जो थोड़ी देर गलबात अहाँ करन तो थोड़ा जहा जड़ा घरे के काम कार तिना जो भी अहाँ सोच विचार करते न कि घरे दे जेड़ा काम मन से करने न करे तो हाँ वैसे भी करी बैठे होने न उन थोड़ी देर जेड़ा दोपहर दा समय है दोपहर दा समय जेड़े से रेस्ट करने वाला होंगे क्योंकि थोड़ा जहा रेस्ट करना भी हाँ वास्ते जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो थोड़ा जहा रेस्ट करना भी जरूरी है। कन्ने इसी कन्ने काम करना भी जरूरी है हर चीज़ अहाँ वास्ते जरूरी है। कन्ने संडे की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ तो जो पुरानी जड़ा यादा न तिना दी ओर लेकर चलते न क्योंकि पुरानिया यादा जो ताज़ा करना भी जरूरी है। कई बार कोई जड़ा अहाँ दी पुरानी याद है से अहाँ जो अहाँ दे जड़ा चेहरे पर स्माइल है से जरूर लेकर आती है तो तुहां भी अपनी जड़ा पुरानिया यादा न से जरूर ताज़ा करी सकते। कन्ने कोई भी है चाहे से कई बार होंदा ना कि अहां दा जेड़ा बचपन है बचपन च बड़ियां सारियां ऐसियां चीज़ां होंदियां कई बार अहां बचपने दा जेड़ा दौर है ना से सबसे प्यारा है। जिन्ना जिन्ना अहां बचपन दे दौर ते अग्गे बढ़ते न तो कुछ ना कुछ अहां जो समझ आउंदा है कि बचपन दा जेड़ा दौर है से सबसे प्यारा है या अहां ये बोली सकदे कि बचपने दियां कुछ शरारतां सही अहां दे चेहरे पर स्माइल लेकर आउंदियां ने चाहे से दोस्तां कन्नै चाहे से अपने माता पिता कन्नै चाहे छोटी दी ऐसी जिहड़ा मस्ती है या शरारत है से कुथी ना कुथी हर इंसान दे चेहरे पर स्माइल जिहड़ा से लेकर आउंदी है। कन्नै संडे दा दिन है संडे दा दिन जरूर तो चाय दी जिहड़ा चुस्की है सभी लगा दे होने ने क्योंकि चाय दे जिहड़ा स्क्रीन है से हर कोई है तो जरूर चाय दी जिहड़ा चुस्की है सभी लगा कने अपना माटी दी मेह कार्यक्रम दा सफ़र भी इंजॉय करा कने इसी कने इस कार्यक्रम दे सफ़र च तुह सारे भी जुड़ी सकते कने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफ़र जो थोड़ा दिया और अगे बढ़ाते न कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न क्योंकि कार्यक्रम फरमाइश ही है कने वैसे भी संडे दा दिन है थोड़ा दिया संडे वाले दिन इंजॉय करना तो बनता है तो तुह भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफ़र कन्नै जल्दी जल्दी जुड़िया कन्नै इंजॉय जेड़ा से करा अपनी जेड़ा फरमाइशां न तिना जो भी कन्नै गल बात जेड़ा है तिहा जो भी तो जरूर चलदे न तुह तक पहुँचांदे न अगली फरमाइश तुह सारे भी इस प्यारी दी फरमाइशां जो इंजॉय करा कन्नै इन्हें सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोतांतु सारे सुनिया एक गीत फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर कने गलबात तो हाँ तक रहनी है 2 ते 3 बजे तक। इसी गलबात जेड़ा तो हाँ दिया फरमाइशा न सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचानियाँ कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते। संडे आला दिन तो हाँ किस प्रकार इंजॉय करा दे न कने अपनी जेड़ा पुरानिया यादा न तिना जो जरूर तो हाँ इस कार्यक्रम च ताज़ा जड़े से करी सकते कने अपनी फैमिली जो किस प्रकार जड़े से तो हाँ समय दे देन क्योंकि संडे आला दिन है। बच्चों की गल करिए बच्चे भी जड़े से संडे आले दिन कुथी ना कुथी यही सोच विचार करते न कि यहाँ जड़ा समय है से अपना किस प्रकार लगान या किस प्रकार जड़े से अपने समय का जड़ा सदुपयोग है से करन। पर अजकने दौर की अहाँ गल करिए कुथी ना कुथी बच्चे जड़ा अपना ज़्यादा समय जड़े से मोबाइल फोन च जड़े से ज़्यादा देंदे न कने अपनी फैमिली जो जड़े से समय नहीं देंदे न। पर संडे का दिन ही जड़े से अहाँ जो ये सिखाई करी जाता है कि अपनिया जड़ा पुरानिया यादा न या अपने कन्ने समय यहाँ बिताई सकते क्योंकि अपने कन्ने समय बिताने वास्ते यही जड़ा संडे का दिन है या बाकी जड़ा छुट्टी वाले दिन है या अहाँ जड़े से जरूर अपने पेरेंट्स जो या अपने जड़ा दादा दादी हैं या बाकी फैमिली दे सदस्य ने तिना जो समय जड़े से जरूर दे सकते। इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: ठीक जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी?
1: मैं बोला ना बैजनाथ बिहारी लाल
0: जी। बैजनाथ ते बोला दे ना जी तुहां?
1: हां जी
0: जी। ता क्या काम कार छेड़िया जी तुहां क्या करा दे?
1: काम कार ता अजकल बरसात है जी।
0: जी अच्छा कदे की चलियो बरसात
1: ठंडी चलियो बरसात
0: जी ठंडी चलियो।
1: हां जी हां जी।
0: आज कना मौसम कदे है जी बैजनाथ दा?
1: ठीक है जी ठीक है
0: जी। ता जहां दी जेड़ा गल बात है से तोहा सुनी?
1: हां जी सुनी जी
0: जी। तो तोहा भी जरूर अपने बचपने दी जेड़ा याद है जेड़ा तोहा जो बार बार चेहरे पर स्माइल लेकर आंदी है या कई बार होंदा ना कि यहां जलू सोच विचार करते न ता जो जरूर कोई ना कोई जेड़ा याद है से याद आई आंदी है ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी। ता तोहा भी अपनी जेड़ा बचपने दी याद है से जरूर साझा कर सकते जी। अगर पेरेंट्स दी गल करिए कई बार होंदा ना कि बच्चे शरारत करदे न जो जरा करी भी ऊंची आवाज बोल दे गुस्सा बनाई लें दे ना जी।
1: जी, जी, जी, जी।
0: पर ये नहीं सोचते कि पेरेंट्स अहां वास्ते ही अच्छा बोला दे ना जी। जी ता क्या तुहां बच्चें जो संदेश देना चाहेंगे इदे उपर?
1: हां जी हां जी बिल्कुल उच्ची आवाज में।
0: जी जी जी मतलब ए कि अगर पेरेंट्स कुछ भी बोला दे ना ता तुहां वास्ते अच्छा ही बोला दे ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी। ता आज तुहां कुंदिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करगे जी?
1: मैं सुनना गद्दी चलना परदेश।
0: जी गद्दी चलना परदेश। जी जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा। जी दर्शकों तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात भी करी सकते कन्ने इसी कन्ने फेसबुक लाइव भी अहां चलियो न ता जितने भी लिसनर जेड़ा न फेसबुक पर दिखा दे न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तो हाँ सारे भी जेड़ा अपनिया पुरानिया यादा न तिना जो अहाँ कन्ने साझा करी सकते कमेंट दे माध्यम ने भी अहाँ तक अपनी जेड़ा पुरानियां याद आना तिना जो पहुँचाई सकते, क्योंकि संडे दा दिन ने, संडे दा दिन अहाँ जो हमेशा क्या बोलता है, इंजॉय करा अपनी फैमिली जो समय दिया, कन्ने कोई भी जेड़ा याद है दिखा पहले दे समय दी। अगर अहाँ गल करिए तो माता पिता अपने बच्चों जो इतनी डांट देंदे थे या बच्चे इतनी शरारत करते थे, फिर भी जेड़ा बच्चे ने उससे गुस्सा नहीं करते थे, उसा गलते जेड़ा ऐसे सीख लेंदे थे कि किस प्रकार अहाँ अगर ये गलती की है तो दोबारा अहाँ ये गलती जेड़ा ऐसे नहीं करनी है। पर अजकने दौर की अहाँ गल करिए तो कुथी ना कुथी बच्चे पेरेंट्स की जेड़ा गल है, जेड़ा कोई भी अहाँ अगर पेरेंट्स अपने बच्चे जो बोला दे ना तो कुथी ना कुथी बच्चे दिसा गल जो जेड़ा से नकारात्मक च जेड़ा नकारात्मक विचार है उस च सोचना जेड़ा से शुरू करी दे ना, तो हमेशा नकारात्मक सोचना जरूरी नहीं है। कई बार अहाँ जो जेड़ा विचार है से हमेशा

0: हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे भी गीत एंजॉय किया। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए स्लेट गोदाम ते कने तिना दा नाम है सचिन कपूर जी, तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। इसी कने गलबात जड़ा न सहा करा देन पुरानिया यादा जो जरूर आज संडे का दिन है, थोड़ा दिया संडे जो फनी बनाना भी जरूरी है या कुछ मौज मस्ती भरा बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी दा हर पन्ना अहाँ जो यही सिखाता है कि अहाँ जिंदगी जो इंजॉय किस प्रकार जड़ा से करी सकते या जिंदगी दा जड़ा सफ़र है से अहाँ जो इंजॉय करना कितना जरूरी है। तो जरूर पुरानिया यादा जिड़ा न तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च ताज़ा करी सकते। कने अगर समय दी ओर अहाँ नज़र दौड़ाइए तो 2:35 कार्यक्रम च हुई न कने अगले जिड़ा श्रोता न से जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं सुरेश बोला सेरे ठाणे ते।
0: जी सुरेश जी बड़े दिनां बाद तुहां रेडियो गुंजन।
1: हाँ जी हाँ जी 6-7 महीने हो गए है।
0: जी जी जी। ता सुरेश जी क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे आज?
1: काम कार आज मैडम छुट्टी ही।
0: जी जी अच्छा छुट्टी एंजॉय करा दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता गल बात सुना दे तो हाँ।
1: हाँ जी
0: गल बात जिड़ा न से सुना दे तो हाँ।
1: हाँ जी हाँ जी प्रोग्राम में तो रोज ही सुनता मैं।
0: जी अच्छा रोज ही सुन दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता सुरेश जी आज हाँ पुरानिया यादा जिड़ा न से जरूर ताज़ा करा दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। अगर तुहंदी भी कोई पुरानी याद है तो तुहां भी जरूर ताज़ा कर सकते ना जी।
1: तो पुरानी तो बड़ियां पुरानी हो ही गई, बचपन में तो सहा ही हुंदा हा
0: जी।
1: हाँ जी खेला वगैरह होंदिया है, लुक लकाड़ होंदा हा, फिर गुल्ली डंडा होंदा हा, फिर गलेलियां खेलदे हे।
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। अच्छा तो उन्हें भी अगर हम गल करिए तो बच्चे ना खेला जो खेल दे तो हाँ दिख दे
1: ना जी। हुन कौन खेला है बच्चे, हुन तो फोन बाजी कोई काम ही नहीं है
0: जी। अच्छा फोन बाजी हुन बच्चे जेड़ा ना से नहीं रही पांदे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पर कुथी ना कुथी मुझे लगता कि जेड़ा गेमा ने खेलना चाहिए दिया ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: या पेरेंट्स जो जरूर दसना चाहिए क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन च इतना ज्यादा बिजी हो गया कि जो आसपास का भी पता नहीं है ना जी।
1: मैडम जी तो वो मेरे दफ्तर आले बोलने बोले आजकल अंकल आपके फोन नहीं उठाती है बोलिया
0: जी।
1: तो वो मैं 5-6 किया ना उस टाइम
0: जी जी।
1: तो वो सारे मेरे को बोलते हैं कि अब फोन नहीं उठाते, अगर मैंने बंद ही कर दिया फोन करना ही
0: जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, सारे श्रोता हम वास्ते एक करना जी।
1: हाँ जी हाँ जी। पहले तो मैं डेली करता हूँ फोन
0: जी जी जी।
1: हाँ जी
0: जी। तो जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा सुरेश जी।
1: ठीक है जी जी।
0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਸ਼ੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਜਨਾਸ ਅਤੇ ਕਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ।

श्रोताओं तो सारे सुनिया एक गीत गीत के बाद हाँ फिर ते पहुंची तो हाँ तक गलबात करना कने तो हाँ सारे भी गलबात इंजॉय करा दे होने ने कने समय भी जड़े से अपनी रफ्तार लेकर चले आए तो जरूर समय जो भी चलना ही पौना है कने हाँ जो भी समय के अनुसार चलना जरूरी है क्योंकि समय के अनुसार चलते न ताई यहाँ अपने जेड़ा काम मन तिना जो करी पाते हैं। तो श्रोताओं कई बार होंगे ना कि जिंदगी है जिंदगी का सफर है से कई बार उतार चढ़ाव जेड़ा ना से जिंदगी चलते रहते कई बार हमारा जेड़ा खराब समय आता है तो हाँ कुसी दी जेड़ा मदद है से जरूर करी सकते अगला जेड़ा व्यक्ति है अगर तो हम जो लगा था कि जिंदगी उतार चढ़ाव है तो तुम जरूर अगले व्यक्ति की जड़ा मदद है से जरूर करा कने तीसरा जड़ा सहारा है से जरूर बना क्योंकि खराब समय च अगर हाँ कुसी की मदद कर देन या कुसी का हाँ सहारा बन देन तो हाँ हमेशा अच्छी जड़ा सकारात्मक जड़ा विचार हैं तिना कने चल देन कने अगला जड़ा व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि खराब समय तो थोड़ी देर वास्ते होंगे फिर यह जो समय है इसे चली आता है क्योंकि समय का जोड़ा कोई भरोसा नहीं है कलू समय जोड़ा इसे अच्छा ही आता है कलू बुरा ही आता है क्योंकि समय जोड़ा इसे अहम जो बड़ा कुछ सिखाई है समय तो अहम बड़ा कुछ सीखते हैं अच्छा भी सीखते हैं बुरा भी सीखते हैं रिश्तों की जोड़ा अहमियत है सभी अहम जरूर सीखते हैं अगले जिहड़ा व्यक्ति है तिसदा व्यवहार किस प्रकार है या किस प्रकार अहां अपना जिहड़ा व्यवहार है से रखा देन सभी जरूर अहां सीखते हैं पर अपनी तरफ ते हमेशा सकारात्मक जिहड़ा विचार है से अपने अंदर रखा कने अगर तुहां कुसी दी मदद करी सकते हैं तो जरूर करा पर कई बार ये होंदा कि अहां सकारात्मक सोच ना रखी करी अहां नकारात्मक सोचना जिहड़े से शुरू करी देन चाहे अहाँ अगर अहाँ कोई भी काम करा देना या अहाँ कुछ जो अच्छा ही बोला देना तो अगला जिहड़ा व्यक्ति है से हमेशा यही सोच विचार रखता है कि ये जिहड़ा से नकारात्मक विचार जिहड़ा से यहाँ तक रखा देना तो हमेशा सकारात्मक जिहड़ा विचार है से रखा कने अहाँ भी तुहां वास्ते अगली जिहड़ा फरमाइश है अगला जिहड़ा भजन है से तुहां तक पहुँचा देना तुहां सारी भी इस प्यारे दे भजन जो जरूर इंजॉय करा।

तो श्रोताओं तुम सारे ये भजन इंजॉय किया कने भजन हाँ पहुँचाया है सुरेश जी तक कने से रहने वाले न सिरठाणा ते तो तुह सारे भी ये भजन इंजॉय किया कने कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक कुछ पुरानिया जिहड़ा याद हैं तिना जो जरूर अहां साझा करा दे थे कने बचपन च अहां हमेशा यही सोचते थे कि कल अहां बचपन के दौर से बाहर निकलते हैं या बड़े आते हैं क्योंकि हर कोई यही सोचता चलो अहां स्कूल जाते हैं तो अहां यही सोच विचार करते हैं कि अहां जल्दी जल्दी जिहड़ा स्कूल ते न कल पास आउट होते हैं कने अगे जिहड़ा कॉलेज जाते हैं या बाकी जिहड़ा जिंदगी का सफर है उस तय करते हैं पर जिहड़ा बचपन का दौर है से सबसे प्यारा है हर किसी वास्ते क्योंकि बचपन का जिहड़ा दौर है से अहां जो ये सिखाता है कि ना कैसी चीज़ की अहां जो टेंशन होती है ना अहां जो तनाव होता है फुल ऑन मस्ती जिहड़ा है से अहां करते हैं कने अपना जिहड़ा बचपन है से जरूर इंजॉय करते हैं।

तो श्रोताओं तो सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का जो समय है सेथु तक ही है, यानी कि 2 बजे तो लेकर 3 बजे तक था। तो तुम सारी ही अपनी रेडियो दो शशिजु दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंथी।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो।
3: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

मोहब्बत। गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन कर और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: 91.2 MHz पर तू है इस टाइम रेडियो गुंजन सी ते रेडियो गुंजन अंदर एक कार्यक्रम तू हूँ होना भी सौगी सौगी रेडियो गुंजन रिजल्ट इन दी ऐप आ तती अंदर एक कार्यक्रम तू हूँ एडना भी ते श्रोताओ आज जड़ा खास प्रोग्राम आए या ही बल्ली की जड़े खास मेहमान स्टूडियो अंदर इन तिंजा ही ते तुम दी मुलाकात करने आ ते मुझे पूरी उम्मीद आ कि तस खास मेहमान ही ते मुड़ गए तुसी हो बड़ी उत्सुकता मुड़े ते बड़े सारे सवाल भी इन बड़े सारे मन रे मन अंदर की कह कि श्रोताओ बलदिन आ है कि तई के ही ना पहाड़ जीत लेगा या तई के जिंदगी में कह कुछ बड़ा कर लेगा तो आज इन स्टूडियो अंदर एक ऐसे मेहमान है ऐसी शख्सियत इन जिनने जिंदगी अंदर वाकई पहाड़ जीतुरा आते ना सिर्फ इन ते हिमाचल रहा बल्कि पूरे इंडिया रा नाज या सो पूरी दुनिया अंदर रोशन कर रहा आते सो इन दे जड़ी युवा पीढ़ी या युवा बच्चे त्यारे ताए बड़ी बड़ी प्रेरणा री स्रोत इन ता आइया तुम दी मुलाकात करवाते इन दे आज के जड़े खास मेहमान इन तिंजा ही ते अंजलि शर्मा। अंजलि बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गुंजन अंदर तुम्हारा।
1: थैंक यू मैम।
0: ते तुम दे बारे अंदर मिंजो ता उत्सुकता थी जानने री ये जड़ी तुम दी पर्वतारोहण री जड़ी यात्रा ता एतिरे बारे अंदर गलबात करनी आ हुए इस कार्यक्रम अंदर पर जड़ी तुम दी शुरुआती जिंदगी आ पहले तड़िया शुरू कर दे कि तू है कड़ी रहने वाले कड़ी जन्म छूरा ते शिक्षा जड़ी प्रारंभिक सो कड़ियों छो रहे हैं।
1: बेसिकली दरीनी साइड हुआ बड़ा पिछड़ा ग्राम दूली
0: जी
1: मेरा जन्म हुआ था तो अक्की महीने बाद फिर जड़े मेरे पेरेंट्स थे सो मिंजे लेके चले धर्मशाला क्योंकि इस साइड कमरा कोई स्रोत ना हो तो मेरे जड़े पेरेंट्स थे तो इतने कैपेबल भी ना थे कि ऑथर भी के अन कर सके तो मेरे पापा मम्मी चले आए तो मुझे मोटी बहन भी है मेरी सो 3 साल मोटे मुझे हूँ तो सो मैकलोडगंज चले आए तो मेरे पापा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अंदर जॉब करी पहले होटल अंदर करी फिर पानी के डिपार्टमेंट करी तो इस बाद फिर एक छोटा जहाँ बिजनेस स्टार्ट करूँ मेरे मम्मी तो पापा है।
0: अच्छा
1: तो मेरी मम्मी पापा तो ने पीनट बटर बनाता है क्योंकि तुझे पता है अंग्रेजी ने जी पीनट बटर जैम और टाइनी मिंट टी वगैरह तो सो मम्मी जो भी सिखाओ तो इस बाद जो है मेरे पापा जी ऑटो लाइन अंदर गए तेना ऑटो चलाओ तो मम्मी मेरे थोड़ा थोड़ा मतलब बिजनेस कर दे अर्न कर दी गई मेरे पापा एक्चुअली बड़े बड़ी शराब पीते थे मतलब तो मेरी मम्मी ने इतना हार्ड वर्क करा कि मुझे तो मेरी बहनी जो एक सेटल लाइफ दी थोड़ी एक अच्छी तो सब तक मतलब मेरी मम्मी है कि मुझे प्रेरणा मिलती है एक्चुअली क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है तो फिर इसके बाद फिर मेरे पापा टैक्सी चलाई मम्मी लाइन अंदर काम कर दी गई अपना तो फिर 2009 अंदर जी मैं फादर की डेथ चली हाँ बहुत छोटी एज अंदर थी 14 साल आ रही थी तने आठवीं पढ़ती थी तो आ गर्ल्स स्कूल पढ़ती थी एक्चुअली अंदर और मेरी सारी स्टडी जो गवर्नमेंट आ वही छू रहा ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल
0: जी।
1: फिर मेरे पापा डेथ होने के बाद मेरा आठवीं बाद क्यूटो चू क्योंकि मेरा अटैचमेंट काफ़ी थू मेरे फादर होगी इसके बाद थोड़ा माइंड डिस्टर्ब डिसीजन लो कि थोड़ा बाहर कर दे कोर्स होता माउंटेनियरिंग का फिर मुझे सो करने ताई मनाली भेजो स्पॉन्सरशिप लगी फिर मनाली चली गई तो इसी पास मतलब डरी गई मैं बेसिक करूँ 26 फिर मैं एडवांस करूँ फिर मैं MOI करूँ MOI करने वाला कैपेबल उच गए आप एज ए लेक्चरर टाइप फिर इसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट इसी अंदर जॉब करना स्टार्ट करी लेकिन मुझे पर डे हिसाब मतलब पे कर देता है।
0: अच्छा
1: सो भी मैकलोडगंज RMC करके इंस्टीट्यूट मनाली री सो ब्रांच तो मेरी मम्मी भी कीप इसी अंदर ही काम कर दी गई फिर मैं काम करूँ फिर मैं अपने 15 साल की उम्र हूँ बाद एक पैसा भी ना मंगू घर मम्मी हूँ कोई बर्डन ना दी तू जी मैं कमाओ अपने घर भी दी तू जितना भी अर्न कर दी थी।
0: अच्छा
1: वन डे रहा मुझे स्टार्टिंग कर दिन मुड़ू 250 रुपये इतने मिलते थे मुझे गवर्नमेंट खाना पीना रहना दिन दी थी तो जो यहाँ एरदी थी RMC जो धर्मशाला इंदा जो गाइड कोर्स भी होता था तो ती एरना की ज्यादा कूड़ी हाई नहीं है एक्चुअली अंदर क्योंकि मुझे ना पता कि पेरेंट्स को ना भेज देता है मैक्सिमम ने तेरे गोबरू एर है ज्यादातर मैं बाहर आई कुड़ी एरी मतलब जी एज ए ट्रैकिंग था इंडिया एडवेंचर कोर्स चलता जी काम करने बाद फिर मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी मैं ग्रेजुएशन करी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी लाइब्रेरियन अंदर थोड़ा धीरे धीरे हालात मतलब ठीक कुछ गया घर रहे क्योंकि त्राई लेडीज मेरे फादर दे आगे पीछे कोई भी ना जी वादा रिश्तेदार कोई मदद कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है शायद
0: सो जरा वक्त वक्त जने पेंदा ना ताने पता लगदा अंजलि की कौन अपना ते कौन बगाना और बड़ी इंटरेस्टिंग श्रोताओं ए गलबात आ शुरुआती दौर अंदर अंजलि वल्लू की हल्की उम्र अंदर पापा ना रह थी है ता आए समझी सकते खास कर सो कुड़ी जा रहे की बुढ़े नान या बह हो पहले अक्की बुढ़े रा गाना आते बह हो बाद जने तुम तो अपना परिवार सैटल बोची छूरा हों ता है अपने परिवार सैटल बुंदीन पर कुआरी कुड़ी रे जने माँ या बुढ़े ना रेंदे ता सो खैर माँ बुढ़े ता बड़ा बड़ा बल्ले सकते कि ईश्वर रे बड़ी बड़ी इनायत आ पर बह हो पहले अगर सुना रेंदे ता दुनिया जी असो पूरी इलेगन दिया ए चीज मैं भी फील कर रही हूँ अंजलि कहे कि मेरा बहन अब शुरू तथी हूँ पहले मेरे फादर साहब जी ये सो अते आक अटैचमेंट हुंदी आ खास कर बूढ़े ही ते जड़े इन दी गपशप हुंदी आ ते इन दे जड़े बूढ़े हुंदे ते न्यों सी ते जड़ी उम्मीदा हुंदी न ता सडनली सो अधी बत्ता इन दा साथ छड़ेगा ता दुख ता हुंदा या अते सौगी सौगी क्या बोलते है आ है ये ना बल्ले सकते कि इन दे माँ बूढ़े इन दे ताए कुछ ना करूँ अपनी कैपेबिलिटी रे हिसाब है जी हाँ तू ये बोलू है कि सो पहले पीनट बटर बनन दी है तथियों बाद तीजे स्विच करू दुबे बिजनेस मा ता मतलब टाइम टू टाइम टाइम मारे हिसाब तीजे भी अपने आप जो बदल ने डाल ले रही कोशिश करी करी तो ये चीज कर खरे कर अंजलि हेरते तो अस अंदर भी चले इंदे कि इंदे माँ बुढ़े कर वर्ड देन त्यारा टाइम बेचारे रहा पुराना तू तो नहीं कुछ भी सुविधा ना थी पर हालात तेरे हिसाब है जी जी आगू बद देन सो अस कुछ ना कुछ सिखा या ता ए थोड़ी गंभीर थोड़ी इंटरेस्टिंग ते थोड़ी इंस्पायरिंग जड़ी इंदे बातचीत आ ए जरूर चलने आता थी पहले जड़े इंदे श्रोता ने तीजा अंजलि आक गीत बहनाना ता अंजलि री पसंद रा कोई गीत जी असो आ हुनना वे अंजलि
1: मैं जो गती गाना अजय बरमोरी रा बहुत अच्छा लगता मिंजो बरमोरी
0: गमत है मिंजो बरमोरी गमत है ढिल्ली ढिल्ली गात्री वाले जरूर अंजलि अंजलि की पसंद रहा गीत हनाना ते जड़े इंदे हुनने वाले ने इस कार्यक्रम जो सो भी इस गीत तरह आनंद उठा ते सौगी सौगी आहू बातचीत रहा भी आनंद उठाना श्रोताओं

0: गीता हो बाद अबे फिर तुंदी जीवन री जड़ी जर्नी है ते पर्वतारोहण री जड़ी जर्नी है इतियो फेरिया है शुरू करते है ता है पूछ रहे थी ये कि इंदे जड़ा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आ धर्मशाला अंदर आ ते बड़े सारे मन हो पाता भी नहीं इंदे कई कुलीन जड़ी पढ़ू लिखू करती पर तीन आए नहीं है दिमाग का अंदर किया है ए ए ऑप्शन करी सकते करियर अंदर पर आ कोर ऑप्शन आ जड़ा की माउंटेनियरिंग आते अंजलि ये सुप्रूव करी दी थ्रू अंजलि आवे आगू हरी गल बात कंटिन्यू करते हैं कि तथियों बाद की है तू आगू बढ़े
1: जी हमें काम करना स्टार्ट करूँ सब तो जी स्पोर्ट्स कैटेगरी इस टाइम जो आक ट्रैक पजामा टी शर्ट शूज जीन देन आऊँ फिर भी कैपेबल ना थी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ते आक डल लेक जी आक स्टोर आ कवाड़खाना एक्चुअली ते लांबे अपना
0: टिबेटन
1: हाँ जी ते लांबे जेड़े ना अपने सारे जेड़े यूज कर रहे कपड़े सो थ्रो करेंगे ते आऊँ अपनी मम्मी होगी गंदी की जी क्योंकि मेरी मम्मी जी शीशी द जार लेके आंदे है ना क्योंकि तुसी पैकिंग

0: फिसो गरबे की दूनी तागन दी मुतड़ी कपड़े छांडने ते मुतड़ी पजामा लेना ट्रैकिंग रा टी शर्टा लेनी ते सो मु वॉश करके सो लगाना
1: यूज करना
0: बिल्कुल ते मैं सो सिचुएशन बे रिया तिसते बाद फिर धीरे धीरे नॉलेज आऊं फिर आऊं प्राइवेट सेक्टर अंदर गई मुझे पता चलो कि प्राइवेट अंदर ज्यादा पैसा मिलता तो आक दिल्ली हूँ कंपनियां तो सो पैसा दिंदी थी पर डे सागू 800 रुपया मैं तेरी काम करना स्टार्ट करूँ शिमला थी नारी ब्रांच ही जूंगा के तेरी काम करूँ 800 रुपये बहुत ज्यादा लग दो
1: फर्स्ट टाइम रे सब है बाकी ठीक तू 800
0: क्योंकि जर्नी रा 100 दिन दे खाने पीने रा तो फिर और बहुत अच्छी लाइन एक्चुअली अंदर आकर रिस्पेक्ट वाले बच्चे रे सामने मुंह लेक्चर देना फिर मुंह बेस बढ़ाना फिर तीन एडवेंचर एक्टिविटी करवाने बहुत कुड़ी ताई बहुत अच्छी लाइन है पर इस टाइम डीपली गाना पैंदा फिर जिस बाद फिर मैं एक फॉर्म फिल करूं दिल्ली विच के स्पेशल वैसे मैं धर्मशाला हूं भी मतलब बाय पोस्ट कर रहा हूं पर आग दिल अंदर डाउट तू कि शायद मैं जो मतलब सो सिलेक्ट कर ना कर क्योंकि थोड़ी हूं सिलेक्ट होना बहुत बड़ी गल है फ्री रख क्लाइम आके माउंटेन मुलना तो सी हो सब कुछ तीन खर्चा देना है क्योंकि लख रहे हिसाब से खर्च अंदर ना कर माउंटेन क्लाइम करने तय पर्सनली फर्स्ट टाइम दिल्ली गई आऊं तो मेरी बहन दिल्ली गए कोई थू ना कोई इतना जानने वाला तो फिर जो मेरे मतलब खास मतलब थे फ्रेंड्स वगैरह तो हाँ भैया जो लेके गई क्योंकि तुसी पता है आख जॉइंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि दुए सिटी अंदर गाना फर्स्ट टाइम चल रही है फिर हाँ तेरी गई ऑफिस अंदर मेरी रिक्वेस्ट करी दोहा जोड़ के बोलो प्लीज मुझो आप मौका दे क्लाइमिंग ताई फिर तीन मुझो मौका दे तू 2017 अंदर
1: अच्छा
0: तो मैं धौलाधार दी हाईएस्ट माउंटेन क्लाइम करूं हनुमान टिब्बा सही हाइट है 5,932 मीटर दा टेक्निकल माउंटेन है तो मैं सो क्लाइम करूं फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा और नॉलेज ही ना स्टार्ट हो जाऊं फिर हम मनाली प्राइवेट सेक्टर अंदर एक्सपेडिशन फिर ट्रैकिंग के बाद एक्सपेडिशन इसलिए आई क्योंकि आप लालच थी किसी अंदर और ज्यादा पैसा मिलता या और ज्यादा अर्न कर ली या फैमिली जी थोड़ा सपोर्ट कर पाई जितना मेरे अपने एफर्ट्स थी फिर जेडी ज्यादा पैसा मिलना लगो फिर जेडी आऊं क्लाइम करने लगी धीरे धीरे आऊं क्लाइम कर दी मैं टेक्निकल माउंटेन बहुत क्लाइम कर रहे पर सो इतना पॉपुलर नहीं है मैं एज ए मतलब अल्पाइन भी करूँ अल्पाइन क्या होता कि अपना सारा सामान खुद ही चुकना से रूट ओपन करना मतलब कि तुम देखा दे पूरा एटलीस्ट ही 30-35 केजी मेरा बैग होता तो फिर मैं सो क्लाइम करूँ फिर मेरी नन्नी जी सो बरमोरा हूँ गद्दी ना टिपिकल तो मेरी नानी दस्ती थी कि ऐसे भी जोत क्रॉस कर दिया था बल्लू नौचड़ी लाई करी फिर मेरे दिमाग का आई मेलू नौचड़ी इतनी आई भी मतलब क्या क्लाइम कर
1: इतनी मोटी नौ इतनी बड़ी नौचड़ी था थी ऊपर डोरा फिर अगर गल करिए पुराने जमाने तो गहना गठा भी बंदा हो फिर सो त्योड़ी लाई करे तूड़े वो करने तो आजकल है मॉडर्न लग रहा बुना था है नौचड़ी साठी इतनी पुछो होते हैं सो चोड़ो डोरो कुने रहे बट तुम के गल बड़ी इंटरेस्टिंग है तो हूं ना चाहते तो हुआना चाहते फिर अच्छा नन्नी हो गई आ तुम्हारे दिमाग अंदर
0: हाँ जी और फिर हम ट्राई करना चाहती कि इस टाइम अगर सो क्लाइम कर दे तो पासिस कर दे था तो हम एक बड़ी चांस लेकर हेर दिया फिर मैं आप माउंटेन क्लाइम करूँ यू नो से हाइट 6,811 मीटर दिया तो मैं तेरी सो नॉन्चरी लाइक ट्राई करूँ तो बहुत ही डिफिकल्ट एक्चुअली अंदर मुझे ना पता इंदर पुराने जड़े बुजुर्ग से सो की कर दे था जो एक्चुअली तो मैं खुद लाई तो मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगो तो मतलब इनके अंदर सो इतनी पावर नहीं है जो जड़ी पावर पहले वाले
1: बुजुर्ग थी पर अंजलि तुसी डिफिकल्ट तो बेशक लगो बुला पर अक विश्व रिकॉर्ड है जड़ा तू एनु आछड़ी डोरे लाई करे जड़ा जो सो बनाई थ्रू ते ए सिर्फ नाइन दी गद्दी कम्युनिटी रे ता है खुशी ते मतलब उत्साह रा बल्ले सकते है पाला बल्कि पूरी दुनिया अंदर तू है गद्दी कम्युनिटी नुआचड़ी मणु जिंजो पता भी ना होना कि कह होंगे तीजा सब भी हो पता कि नुआचड़ी लाए करे तिरंगा फहराना इतनी उची चोटी पुर बड़े गर्व री गल गल्ला करे करे पूरी दुनिया अज तुसी जानो अरते तुंदा जरा जिंदगी रा सफर आए भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ श्रोताओ बड़ी सारी कुली हुंदी इंदे समाज अंदर इंदे कल्चर अंदर जेडे कि मध्यम वर्गी परिवार अंदर हुंदी या ततियों भी थोड़ा लो परिवार ही होंगे न बली सकते आए घट होंगे पर सुपने दे बड़े तगड़े होंगे न कई बारी कुछ एक इन जरा पूरा करी पाते न ਤੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਜਲੀ ਇਹਦੀ ਸੌਗੀ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਆਵੇ ਆਗੂ ਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਗੀ ਸੌਗੀ ਆ ਗੀਤ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੁੰਦੀ ਪਸੰਦ ਰਾ
0: ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲਗਨ ਸਜਣਾ
1: ਚਲੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲਗਨ ਹਣਾਈਂਦਨ।

0: श्रोताओ, तेरा मेरा लगन गीत तू है हुणु आ ते अंजलि जड़ी इंदी पर्वता रोहन इंदी बेटी आ इंदी देव आ हाई ते गलबात पूछो ते आज स्टूडियो अंदर अते किया किया डिफिकल्टी पार करी करी दिन जा अपना ये सफर तय करू तेरे बारे में गल करो दिन इस गीता हो मिंजो आ कोर दिमागा ख्याल आ कि लगन वाली गल पूछो दे ता हाल ही मा रिसेंटली पिछले साल ही ना अंजलि पिछले साल ही अंजलि रा बै बुआ थू बड़े सारे इंदे पल्ले सकते न समझदार मनु दिन ट्रॉल भी करू बड़े पुठे सीधे कमेंट भी करे ताती रंजली ऊपर एक प्रभाव कैब हुआ आते ए तेरे बारे में बाद गल करनी है फिलहाल ए गल करनी है कि जड़ा इंदा जवाई आ तसी सिर्फ गद्दी रा जवाई बल्ली या हिमाचल रा जवाई बल्ली ए ठीक ना होना बल्कि सो पूरे इंडिया रा जवाई है इंदा अंजलि इंदे जवाई रा ना के आते बल्लू सेरा ना के आते ग्रां के सो भी असी दसा
1: मेरा हस्बैंड दा ना आईवस कैजुका फ्रेंच नेम आ सो क्रिश्चियन और सो ईस्ट अफ्रीका इंदा बहुत प्यारी कंट्री आ रवांडा
0: अच्छा
1: बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री आ थोड़ी आ बड़ा कुछ सीखी जरूरी कि सफाई
0: थोड़ी जरूरी आ
1: सो सिविल इंजीनियर ना ता हाल ही अंदर सो यूएस अंदर जॉब करते यूएस कंपनी वर्क
0: तुम दी जड़े बल्दे सो मुलाकात कड़ी बोई थे किया सफर आगु बढ़ू
1: मेरी मुलाकात मॉस्को अंदर हुई थी रशिया अंदर जड़े वो सेकंड अपना क्लाइंब करना चली थी मैं एक्चुअली अंदर दो कॉन्टिनेंट क्लाइंब कर रहा जड़ा पहला कॉन्टिनेंट जी मैं तंजानिया अंदर क्लाइंब कर रहा जड़ा अफ्रीका अंदर आ और तिसते बाद फिर आऊ रशिया अंदर गई थी एक माउंटेन एल्ब्रस मिंजो चिड़ी मोड़े थे सो एयरपोर्ट पर जस्ट एक नॉर्मल ही गलबात हुई थी जी हाँ से दुए देश अंदर पूछते जी चेकिंग होंगी इनकी पूछते हैं पर्पस की है तुम्हारा ये मेरा जस्ट ऐसे बेव रहते हैं तो डिस्कशन कर ली कि तुझो क्या कुछ हुआ मिंजो क्या कुछ हुआ जस्ट नॉर्मली ही आके ऐसे फ्रेंड गाल हुई थी फिर इन द इंस्टाग्राम एक्सचेंज हुआ है फिर नॉर्मली गाल कर दे फिर वाइब्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी मेरा हस्बैंड ने मुझे प्रपोज करू सीधा डायरेक्ट बैठ आई क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी वाइफ मुन कर दी आपकी दुए जो अच्छो की जान कर दे ता हम बैक करना पसंद कर ला तो मैं बोलो थोड़ा टाइम क्योंकि आऊ कॉन्टिनेंट अनदर कॉन्टिनेंट में बैक करना लग रहा बहुत डिफरेंट हर एक चीज स्वाक्तियो डीएनए आऊ आक भारतीय तथे पेरेंट्स को मनाना बड़ा एक डिफिकल्ट काम आ
0: त जड़ा इंदा जवाए सो थोड़े पक्के रंगा रा ते अंजलि जी सो हिमाचल रे अबे तुसी पता धौलादार रे एटमॉस्फेयर अंदर पल रे ता थोड़ी गोरी चिट्टी आ ता मन मु थोड़ा इना मिस मैच लगता पर श्रोताओ जड़े तुम दे ट्यूनिंग मिलेगन दिया तुम दे दिल रा कनेक्शन बनेगन दा रे तुम दे मेंटालिटी सेम हुंदे आ ता फिर गोरा काला कणक बनना ये सब कुछ साइडा हो रही गंदा अक जो कंपेनियन सो तुम कतूड़ा समझदा कतूड़ा तुम्हारा साथ दिंदा ये गल बड़ी जरूरी होंगी है ना अंजलि
1: जी बिल्कुल मेरे हस्बैंड की सोच बहुत अच्छी क्लियर आ डिसिप्लिन बहुत आ कि ये ना कि ऑर्डर देना मिल चुके बहुत ही डिसिप्लिन अंदर आ मैं शायद अपने कजिन भी ना रहे इतना डिसिप्लिन अंदर जितना मैं अपने हस्बैंड नहीं रहूं डिसिप्लिन अंदर और सो मुझे इतना सपोर्ट कर देने कोई चीज मतलब थोपनी नहीं मुझे कि ना तू यही करना ना तू अपनी हिसाबों जी खुली कर जी तू जड़ा करना लाइफ तू सो कर कोई ऑर्डर ना ये चीज
0: आक सवाल अंजलि आक जी इन दे गाद अंदर वाल देना कि आ है ता मतलब दबंग टाइप पहाड़ा चढ़ने वाला है ठीक है ते दूआ जड़ा इन दा सौगी है साथ है सो आईटी अंदर आईटी ही ते रिलेटेड आ इंजीनियरिंग दी फील्ड आ तुम तो दोनों का जरा अलग अलग काम आ ए तेरी वजह हूं तना कदी ही लगू कि थोड़ा मतलब सेम वो होना चाहू मतलब सेम प्रोफेशन होना चाहू या कुछ ही
1: ना ऐसा कुछ भी ना क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में थॉट था कि मुझे सेम जी हाँ क्लाइंबर आ मुझे क्लाइंबर होगी बैक करना क्योंकि ऐसे क्लाइंबर में सो चीज क्योंकि दो तीन बारी मौत रह मुँह हूँ भी वापस चुड़िया आना चाहती कि जरा मेरा पार्टनर है उसको भी सेम लाइन ही हुआ क्योंकि ये जड़ी क्लाइंबिंग लाइन है सो बहुत ही एक डिफिकल्ट है जब ऐसा क्लाइंब करते तो ऐसा पीछे नहीं हिरदा कि अगर ऐसे इनकेस अगर चिड़ी मरी गया कुछ भी चुनिंग तो ऐसा नहीं हिरदा कि पीछे कोई हारना ऐसे फ्री क्लाइंब करना क्योंकि ऐसे मतलब

0: तुंदा दोनी राय जिंदगी रा जड़ा डिसीजन आ ते जिंदगी रा जड़ा शादीशुदा जिंदगी रा सफर आ है उम्मीद कर दें ते दुआ कर दे कि अच्छा सफल रहा ते आग सवाल और एक छोटा अंजलि मन अंदर जाने तुंदा बै बुआ थू ता तू एनु आ चढ़े लौरी थी ते जड़ा इंदा जवाए या पूरा साफा सुफा हेरा लाए करे ता बड़ा एरे करे भी खरा लग गुरदू की पूरा इंडियन कल्चर अंदर हुआ इंडियन कल्चर अंदर भी इन दा जड़ा गादा कल्चर ही गाल करिया है ता उन्हों आचड़े लाने आते जड़ा लाड़ा ता सी उल्लाग पहनावा ट्रेडिशन रसाब बे ता सो बड़ी ईमानदारी ही ते ही वाज एंजॉयिंग ऑल द रिचुअल्स सो एरे करे लग गुरदा थू ता बहर दौरान कह थू त्यारा वो रिव्यू
1: एक्चुअली अंदर सो बड़ा कंफ्यूज है मैं ऐसा कुछ ना दस रोज स्टार्टिंग अंदर कुछ कुछ वीडियो पे भेजी थी कि संदूरी राणा पंडा मतलब राउंड फेरे होंगे तो थोड़ा बहुत इन इंडियन बारे नॉलेज आ पर मैं बोलूं मेरा जो ट्रेडिशन है बहुत ही डिफरेंट है मतलब वो इस हिसाब होना तो जो सारा लाना पैना मतलब बहुत ही कम्फर्ट लिया बोलो ठीक है बोलो इतनी कोई टेंशन ना ले मेरे हस्बैंड ने ठीक है जी अब बल्ले बोलू थी वो कर लाना बोलो
0: चलो बड़ा अच्छा लगे होने करे आते श्रोताओ नेगेटिविटी री गल ना करना चाहते पर थोड़ा ही ना वो लेना जड़े अंजलि रा बह हु तेरे दौरान कुछ एक वीडियोस वायरल हुई ही तती अंदर यार जड़ा मैरिड कपल आ तीनों ले करे मन में बड़ा ही पुट्टा सीधा बल्लू थू ते इवन आऊ तड़े अंजलि जानते बिना थी पर मिंजो एज ए वुमेन बल्ली या जो भी आ इन द कल्चर सब कुछ जुड़ रही थी तो मिंजो सो जो कमेंट इन तीजा पढ़ी करे बड़ा दुख पुछो क्योंकि मनु ने सोच इस लेवल तक भी खिंची सकते मतलब ऊपर ना बनूंगा कि तूड़ा डाउन भी सोची सकते मनु तो अंजलि अज सौगी अंजलि हो पुछना थोड़ा ही पुछना गया कि बल तो नैगेटिविटी का तू जिक्र कर तो सो फैल दिया बट वी आर हेयर टूडे पॉजिटिविटी तो पॉजिटिविटी फैलाने रहता है सो कुछ एक बड़े खतरनाक नेगेटिव कमेंट थी है तेरा कुछ असर पे तू
1: बहुत असर पे तू जी कि 25 तारीख को मेरा ब्याह हुआ इधर तक मुझे वो कुछ पता ना था कि क्या चल रहा सोशल मीडिया अंदर तो 26 तारीख को जी मेरी विदाई हुई ऐसे चली गए होटल अंदर फिर इवनिंग टाइम जस्ट मैं चेक करूँ यहाँ फोन तो हाँ जी चेक करूँ थी मतलब मेरे ही मतलब न्यूज आई ना फिर मैं पर्सनली अपना इंस्टा ओपन करूँ क्योंकि मैं ही कुछ ऐसा पोस्ट ना कर रहा था तो मनु पर्सनली की चीज करी मुझे गाली दी चु कर देना व्यूज करू कर देना मेंटली बहुत ही हरास हो चुक रही थी उस चीज तो आऊ लिटरली मतलब रोना लग पी तो मेरे हस्बैंड कंफ्यूज कोई रोना लग गया फोन ना हेर गया सखिया तो तिनी फोन हेरू क्योंकि कमेंट जरा था सो इन द हिंदी अंदर था इंग्लिश अंदर करू रहना था मेरे हस्बैंड जो सो ट्रांसलेट करी करी की पढ़ना फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे पता सो अजीब गल करी पर मुझे हूं की बुरी लगी बोलू तेरे बोलू दे शर्म बोलू एजुकेटेड नहीं बोलू पढ़ रहे लिख रहे नहीं बोलू इतना की मतलब सो इस तरह की चीजा बोलू कर दे बोलू क्योंकि बोलू शायद बोलू मेरी कंट्री कोई फर्क ना पिया बोलू ऐसे तू वाइट वुमेन मिंजो की बैक करूगा तो मेरी कंट्री ऐसा कोई फर्क ना पड़ना तेना बहुत अप्रिशिएट करना क्योंकि यूरोप साइड आ रहा भी उची गया यूएसए साइड आ रहा उची गया वाइट टिपिकल वाइट पीपल भी ब्लैक होकर बैक कर दे तो तेना कोई फर्क ना पड़ता और मेरा हस्बैंड बहुत ही शॉक था मतलब इतनी अच्छी सोच खड़ी हूँ लिंद रहे बोलू तेना बोलू तू इतनी टेंशन मतलब छड़ पर है बोलना देना जो फिर भी थोड़ा लगता क्योंकि मैं अपने पूरे एफर्ट्स पूरे मैं क्लाइम कर रहा मैं अपने ताय ना कर रहा मैं अगर गद्दी कल्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहा दूसरी कंट्री अंदर गिच करी सो मैं अपने स्वार्थ ताय ना कर रहा हाँ तो सुनना चाहती हूँ उसी कम्युनिटी को बिलोंग कर दिया इनका ये पहनावा बहुत ही अच्छा पहनावा इसी अंदर मुझे तो मन नहीं सकते मुझे कोई फायदा नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया करी हूँ कोई कुछ नहीं है जड़ी मेरी स्पॉन्सर आई बहुत ही लिमिटेड आई मिंजो क्योंकि सारा मतलब जो ना स्पॉन्सर करने वाला थी ना ही इन्वेस्ट कर दू तो मेरी तरफ आऊ मैं ऐसा कुछ भी ना तू आऊ एज ए क्लाइंबर को छूरी थी मेरा मोटिव तू अपने गद्दी कल्चर जो रिप्रेजेंट करना कि आऊ गद्दी कल्चर आऊ इंडिया एक्चुअली आऊ टिपिकल ऐसे गद्दी भी नहीं क्योंकि मेरे फादर जेडे ना सो जानद रहे ब्राह्मण तो मेरी मम्मी गद्दी बामण तो मुझे गद्दी में एक्चुअली लिटरली बहुत लगाव मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कल्चर तो मैं इतना

0: फिर मुझे लगू दिलापुर लगी कि मानो इतना की है बल्ली सकदन।
1: चलो अंजलि, एती मां हताश निराश बुने रे कोई भी गल नहीं, मणु बल्ली सकदे न, पढ़े लिखे मणु अगर इंज ने कमेंट कर सकदे ता सो खरा भी लिखी सकदे थी है। हालांकि ए सोचना चाहिंदा कि तूड़ी हल्के ने ग्रां थो निकले करी कूले कड़ी गिच करी तुंदे देश रे झंडे गाड़ वरदे आ आहे सोना एरू मणु है, पर नेगेटिव कमेंट करने है खूब धड़ाधड़ धड़ाधड़। इवन मैं ही जी कि बल्लू है कि आऊं ताने दिक्कर बिल्कुल भी ना जान दी कि अंजलि कड़ी हो मिंजो भी ना पता कि इवन इन दे कोले है ते इन दे ही धर्मशाला री रहने वाले है। ये ता आकी टट्टी साला री रिसर्च तो बाद मिंजो पता लगो कि अंजलि धर्मशाला री आ। ता चलो एतियो है ई बल्ले सकदे कि अपनी आ है सोच बदली सकदे थोड़ी नी कि हर उतरी इंसान दी भी पॉजिटिव ते नेगेटिव जड़ी छवि हुंदी आ सो बुंदे आ। पर अगर कोई खरा करोड़ता ना सिर्फ अपने ताए अपनी कम्युनिटी रे ताए बल्कि पूरे देश सारे ताए अगर तूड़ी दूर खिंची करे इतनी मेहनत करी करी कुण खे वाकई इंद्र झंडे फिर आवरदे आ ता असी थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिंदा कि इंदा बच्चा तूड़ा करोड़ता ता आ है ता असी एप्रीशिएट करन। अगर पूरे हिमाचल था आख को निकले करे इं कर सकते तो इनकी बाकी कुड़ियों भी आ है प्रेरणा दीन ते अंजलि साक्षात एडी सबूत है कि आख करी सकते आख अंजलि अगर पर्वतारोहण अंदर अपना ना करी सकते तो इनकी होर भी बड़ी सारी अंजलि जड़ी की अले लगुरी मोटना सो भी करी सकती। अंजलि अब ये पूछना कि जिया कि एडिया तू पूरा इंडिया अंदर अपना मतलब परचम फहराऊ इंडिया अंदर ही ना बल्कि विदेश अंदर।
0: स्टार्टिंग में मैं ही क्लाइम करूँ मैं ही दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनो रहे ना तो मतलब मुझे आप सिर्फ क्लाइम करने के बाद हिमाचल गौरव मिलू मुझे दिल्ली अंदर इसी अंदर आपका अमाउंट मुझे दी 11,000 का जरा मान सम्मान दी तू सो बहुत अच्छी गल है जी। अगर आप क्लाइंबिंग लाइन अंदर आ क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है तो शायद मुझे थोड़ा और सपोर्ट कर सकते थे आऊँ हिमाचल ताए इंडिया ताए कुछ और आगे कर सकती थी तो मतलब सपोर्ट बहुत जरूरी है मतलब और मुझे जितना भी डोनेशन मोड़ रहा सबर मोरा हो मोड़ रहा एक्चुअली ना कुड़ी को सपोर्ट करना जरूरी है कुछ सपोर्ट कर देना शायद 10 कुड़ी और इंदी 10 कुड़ी और इंदी तो मान सम्मान बढ़दा कुड़ी रे मावड़े रे भी बढ़दा सीते सरकार का भी बढ़ता तो सरकार जो शायद मतलब डिसीजन लेना पैना कि युवा ताई कुछ ना कुछ करा स्पोर्ट्स कैटेगरी अंदर क्योंकि मैं ये रहा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी बहुत कम कुड़ी मतलब मैं नहीं सकता 2011 अंदर में ही MI कर रहा तो पहली ही कुड़िया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अंदर इसके अलावा कुड़िया शायद कर रहा बेसिक कर रहा पर तीना सो खत्म करी तरी स्टोरी अपनी ना ती ना अगे कोर्स करू ना काम करू ना समझने की कोशिश करी ती ना तेरी स्टॉप करी तू अबे प्रेशर कुछ चीज दा शायद एज दा प्रेशर होला सो द मुझे बाकी अंदर ना पता या फिर फैमिली का प्रेशर होला कि आप एज अरे अकॉर्डिंग लाइफ सेट करनी है बैरी मतलब बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंदे पेरेंट्स की ना तुंदी 25 साल उम्र च गया अब आप उम्र चले है बैक करने ली तो शायद कुड़ी थोड़ी मतलब स्टक कर दिंदे और तू ये गल कीजी आवे कोर्स हुंदे न एडवेंचर देड़ी गाइडेड कोर्स हाल ही अंदर हुआ फ्री रा कोर्स आ 14 दिन तक गवर्नमेंट दे अंडर रहना खाना पीना सब कुछ जिना ट्रेनिंग ने और ती सर्टिफिकेट दी इतनी वैल्यू है ना अगर सो कुड़ी गोबरू डिफेंस लाइन अंदर गंदे तो 5 नंबर मिलते मैम किसी चीज रहे तो मतलब इस बारी गोबरू थे कुड़ी थी ना घर खा सो कुड़ी कोई नहीं थी मुझे भी समझ ना आई एक्चुअली मेरे गुरु जी भी रहे ना मनाली मैं गाल करी मैंने ये तो बड़ी मतलब सोचने वाली गाल है कि धर्मशाला फ्री रहा कोर्स चल रहा और कुड़ी नहीं थी अंदर
1: शायद थोड़ा इना इन्या चीजा रा प्रचार भी ना पूछी बंदा अंजलि मिंजो ये लगता आते बुना चाहिंदा ताकि इनकी कई कुड़ी ऐसा नहीं है कि हर कोई फैशन ते उतरी एडवरटाइजरी दुनिया अंदर इन कई इन जड़ी की इंजन एडवेंचरस करना चाहती पर थोड़ा कईयो जानकारी ना मुड़े पाते इतनी जानकारी हुआ तो जरूर एती करन मेरी जड़ी युवा बहनी कुड़ी सो अते अंजलि ये बोलू कि बुरमोरा हो बड़ी तगड़ी इंजा यो सपोर्ट मुल रही थी सब भी बुरमोरी बहन भाई रा बहुत बहुत शुक्रिया ये अल्ले भी बड़े मुकाम इन अंजलि हासिल करने हो जड़े कि करने न ते देश दुनिया अंदर अगर यह उम्री ना करे चुकरिया ताली वाले टाइम अंदर बड़े बल्लू बड़े हो न जितने हो ना बड़े पहाड़ जितने जड़े की झंडा फहराना आछड़ी लाई करे। अंजलि गपशप बड़े इंटरेस्टिंग आ बड़ा मजा छोड़ता अंजलि अवे कल बात यही पूछना कि खास कर कुड़ी रेताए फेरे कि आ तू है जहा उम्री शुरू कर रहा सो तो बड़े हल्की उम्र थी 14-15 साल आजकल 14-15 साल के 20-22 साल रहे बच्चे भी थोड़े हल्के या है बलते कि निकड़े न ले निकड़े न ता कुड़ी रेताए कि हाँ तू है एडवाइस कर दे कि अगर सो माउंटेनियरिंग दी फील्ड अंदर गाना चाहती ता कने शुरुआत करना चाहते हैं तो किया किया करना चाहते हैं शुरुआत
0: जी हाँ क्लाइंबिंग लाइन अंदर गाना तो सबसे पहले तो स्ट्रोंग होना वैसे तो हिमाचल की कुड़ी स्ट्रोंग ही होती ना पर इसी लाइन गाने तक तुम रिसर्च करना पैनी ऑनलाइन चेक करना पैना कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप हल्की उम्र अंदर ये चीजा कर सकते ना और आऊ 2010 और 2011 की गल कर दी जिस टाइम में कोई सोशल मीडिया इतना ज्यादा ना होता तो नॉलेज ना होता तो आज के टाइम में तो सोशल मीडिया नॉलेज फुल तो कुछ भी सर्च करा सो चलिंदा तो मुझे लगता है सर्च करा और इसी लाइन अंदर अच्छा बहुत अच्छे स्कोप ने आगे खिंच करी तो बहुत बड़ा नाम कर सकता अपने पेरेंट्स का अपना खुद रा मुझे वाला ऑप्शन बहुत उस सकता था क्योंकि आप कुड़ी थी आकल की उम्र अंदर शायद आओ 18 साल बाद बह भी कर सकती थी अपने पेरेंट्स से छड़ी करी आओ नटी के कर सकती पर मैं तिया ना करूं अगर अपने पेरेंट्स से सपोर्ट भी करना पैंदा और दूसरी गल अपनी मैनर जो दसना पैंदा कि हाँ आऊ कैपेबल हाँ ये चीज अंदर मुझे ना लगता कि शायद कुछ अजीब थॉट लेके अगर तुझे चल रहा है तो काम है अपना तो सेटल आकर थॉट रखा कि मुझे चीज करने और उसे प्रूफ कर अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स ताई हाँ कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुझे अपने बच्चों इतना नाजुक मत बना क्योंकि आज के टाइम में 20-22 साल 21-25 साल तक बच्चा स्टिल बच्चा है तीनों बच्चा मत बोला सो बहुत ही समझदार दिमाग हा कुछ भी कर सकते क्योंकि मुझे लगता है जिन्हें वाला पेरेंट्स ने अगर सो सपोर्ट कर दे तीनों अपने पेरेंट्स का फायदा चुकना चाहता
1: बिल्कुल
0: क्योंकि तीनों वाले अच्छी इनकम आ तो तीनों पेरेंट्स जो बोला मुझे ये चीज करनी सपोर्ट करा मिंजो और क्लाइंबिंग लाइन अंदर गाना तो तुसे कोर्स करा जो इंडिया अंदर इंस्टीट्यूट
1: है शुरुआत जरा इंदा धर्मशाला रहा है सुकड़ी निया सो इंदा जरा एरने वाले श्रोता न एग्जैक्ट लोकेशन था तेरी कह रहा हूँ तो तीन ची पैदल इंडिया में जो पता पर तू है जरा दस से दिया कि कड़ी नहीं है सो इंस्टीट्यूट है कि यहाँ रीच कर सकते हैं
0: अगर तो स्टार्टिंग अंदर है ना कि मिंजो ले कितनी कैपेसिटी है तो तुझे स्टार्टिंग अंदर एडवेंचर कोर्स करा गाइड कोर्स करा 14 दिन रहा सो धर्मशाला मैकलोडगंज ऊपर जी धर्मकोटा रा शॉर्टकट रास्ता गंदा आर एस
1: हयात वाला रोड
0: जी बिल्कुल हयात होटल
1: हयात जो सभी जानते हैं मैकलोडगंज तो पैदल शॉर्टकट तक रास्ता खाड़ी चढ़ाया थोड़ी जी, जी। नहीं सो चढ़ाई तुसी दस इंदे कि तू क्लाइम कर सकदा कि ना तो तड़ी लेफ्ट साइड तेरा इंस्टीट्यूट आ और मिंजो भी थोड़े साल पहले पता लगू तो जने पता लगू तड़े मेरे मुन्नी हल्की ही मैं ही सो ले और ही तो मैं लुकाश ये चीज पहले पता हूं शुरुआत अंजलि तड़ियों कर सकते ना
0: जी बिल्कुल तड़ियों ना गाइड कोर्स करके फिर तुसी अथॉरिटी मिली जाते एलकल का क्लाइम करने या क्लासेस होंदा एज ए गाइड तुसे ट्रैक करवाई सकते हैं क्योंकि विदाउट गाइड रे अगर उसे कर एलकल का ट्रैक भी कर ले तो मिस हैपनिंग कुछ कर दिया फिर तिसते बाद अगर तुसी लगदा कि मिंजो दा सो पावर हा तो तिसते बाद तुसे फिर ही पूरे इंडिया अंदर 5 इंस्टीट्यूट ना नेम जेम और मनाली जड़ा अभी मास करके रहा तुसे ऑनलाइन सर्च कर सकदे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जेड़ी फैसिलिटी भी इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पॉन्सरशिप मिलदी क्योंकि मैं खुद 3 times स्पॉन्सर ले रहा तो फ्री अंदर कोर्स कर पर तुसी सो ऑनलाइन चेक करना पड़ना टाइम टू टेबल और तुसी अंदर बेसिक कोर्स है जड़ा 26 days रहा हुंदा तुसी अंदर पूरी क्लियर हो जांदा कि तुसी वाले कितना स्टैमिना हा कितना तुंदा आईक्यू हा पूरा सो फर्स्ट एड भी दसते न रोप भी दसते न कि जड़ा हजार्ड सीन है तुसे कि क्लियर करने अगर शायद अगर तुसे क्लाइंबिंग लाइन ना गाना चाहते पर फिर भी तुसे एक कोर्स करा क्योंकि एक कोर्स दसता डिसिप्लिन क्योंकि ऐसे जड़ा भी गंदी आकटी भी गच्छू मेरा बैग हूं सीते हुंदा अगर हम कुछ खाओ थ्रो ना कर दिया हमेशा अपने बैग अपन दिया ट्रैकिंग क्लाइंबिंग बहुत कुछ सिखा दिया आम जिंदगी के अंदर क्या करना तो सो कोर्स करा और ए ग्रेड लेने के बाद फिर एडवांस हुंदा एडवांस बहुत लेवल दा हुंदा तुसी पूरा टेक्निकल दसदे कि तुसे कियां पहाड़ चढ़ने क्योंकि पहाड़ एक ऐसी चीज है ना कि असें पहाड़ दसदे कि असें बड़ा स्ट्रांग ने पर पहाड़ हमेशा झुकाई दिंदे क्योंकि सब चीज में ये रखो तो टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगर तुसी लगदा कि एज ए लेक्चर मतलब दसना बिलकुल लेक्चर आल बनना तो एम आई करा तुसी इन टोटल ही तुसी लेक्चर देना पैने न और तुसी अंदर तुसी एक प्रोजेक्ट देना तुसी अंदर तुसी ओ क्लियर करना पैना तो इसके बाद तुसे फिर एक इंस्ट्रक्टर निकल के निकल देना जी।
1: अच्छा अंजलि ये श्रोताओ ते दर्शक पूरा पूरा दसीता बात की किया किया पहाड़ चढ़ना ते कै कै स्टेप इन तू धर्मशाला रे अगर रहने वाले तो धर्मशाला हो शुरू करी सकते हैं फिर अगली सीढ़ी या मनाली तथियों बाद ऑल इंडिया लेवल रे इंस्टीट्यूट इन तड़ी तू है जड़े न गिच करे अपना ये माउंटेनियरिंग अगर तू दा सपना तो सी पूरा करी सकते हैं। ते अंजलि पहाड़ वाली गप लग रही है ते अक इंडी सिंगर आता है गीत पूरा बड़ा छैल की लिस सीजन गया जोत की लाना कार्यक्रम आगू बढ़ता है।

0: श्रोताओ एक गीत हुणू अतु है एतियो बाद अब है मिंजो लगता गल बात इंदे बुचे गया अते अंजलि ओ एड़ी हदरुआ है अंजलि रा बड़ा कीमती टाइम है लेगुआ अंजलि अपने जीवन रा पूरा सो बलते ए टू जेड जो भी वृतांत सो असी हणुआ ते उम्मीद करदे श्रोताओ अते दर्शको की तुसी ओ सारे जीवन थों प्रेरणा मोले बोले खास कर इंदी जड़ी युवा कुड़ी न त्याने ताई मैं अंजलि रिक्वेस्ट करी कि इंदे जड़ी समुदाय री कुड़ी न खास कर गादे कल्चर की जड़ी कुड़ी हुंदी सो सॉलिड हुंदी ते अगर ए रोरदी हुण वरदी ता अगर थोड़ी तुसी अंदर वीकनेस भी आदा थोड़ी स्ट्रोंग बनी अच्छा अंजलि हो एरे कर इंस्पायर हुआ थोड़ी नी कि आ है ता पहाड़ा जोता रे मन ते है ये ना बुझ सकते न मतलब बिल्कुल जतियो बोलता ना कि वो सो कच्चरी गुड्डी हाई ना आहू बिहेव करना थोड़ा स्ट्रोंग बनना अपने जड़ा पुराना इंदी जड़न तती ते जुड़ना अते पहाड़ चढ़ना जरूरी नहीं है पहाड़ ही चढ़ना जिंदगी में बड़े तरह रे पहाड़ इंदे चढ़ने हो सो हर फील्ड अंदर तू एक कामयाब बून इंदी यही दुआ ते अंजलि तू एड़ी आए अपना कीमती टाइम दिता अपनी पूरी बहों पहले रही ते बहों बाद तकरी पूरा जिंदगी का सफर असी ते डिस्कस करूँ तती ते बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू मैम।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रोपवे से जुड़ेंगे हिमाचल के 4 धार्मिक पर्यटन स्थल। मनाली में अगले माह होगा पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप। गाँवों में प्लास्टिक निस्तारण के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लगेंगे पंख। अब समाचार विस्तार से। दुर्गम धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के तहत 4 रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML की ओर से प्रस्तावित इन परियोजनाओं में सिरमौर, कांगड़ा और चंबा के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल शामिल हैं। परियोजनाओं का बड़ा उद्देश्य सर्दियों में भारी हिमपात के कारण बंद होने वाले रास्तों की समस्या कम करना है। चुंजा साहसिक पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। डीपीआर तैयार करने वाले कंसल्टेंट अत्याधुनिक तकनीक, भू तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात मांग का आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों की बीटेक के 44 मेधावियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण 2026 के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 12 सितम्बर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर है। इससे पहले ITI के विद्यार्थियों के लिए कजाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर आयोजित किया गया था। इस टूर के माध्यम से विद्यार्थियों ने कौशल विकास की विविध पद्धतियों और वैश्विक व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस अभिनव पहल को आगे बढ़ाते हुए अब BTech के मेधावी विद्यार्थियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान किया जा रहा है। सरकार कौशल शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस शैक्षणिक भ्रमण में विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के 24 छात्र और 20 छात्राएं भाग ले रही हैं। विद्यार्थी जापान की प्रमुख शैक्षणिक, अनुसंधान एवं औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे। इनमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जैक्सा सुकुबा स्पेस सेंटर, साइबरडाइन रोबोटिक स्टूडियो, JEL एरोस्पेस फैक्ट्री, क्योसीरा फैक्ट्री तथा ओसाका स्थित विभिन्न उद्योग शामिल हैं। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, उन्नत विनिर्माण, नवाचार और आधुनिक परिवहन प्रणालियों का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी जापान की अनुशासित जीवन शैली, विरासत, कार्य संस्कृति और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। ये पहल राज्य सरकार की मेधावी युवाओं को वैश्विक अनुभव प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 5 से 8 अक्टूबर तक सोलंग नाला की स्की ढलान में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहसिक खेल आयोजन में देश विदेश की पैराग्लाइडिंग पायलट हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी संगठन और पर्यटन कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं। प्री वर्ल्ड कप के लिए अब तक 64 पायलटों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इनमें 4 महिला पायलट भी शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पायलट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मनाली पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के दौरान पायलट फाखरों से उड़ान भरेंगी और सोलंग नाला में लैंडिंग करेंगी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान में उड़ान भरती पायलटों का रोमांच देखने लायक होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले पायलटों के लिए FEI लाइसेंस अनिवार्य होगा।
1: प्रदेश सरकार के प्रभावी कदमों से स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ हो रहा है और हिमाचल देश का स्वास्थ्य हब बनकर उभर रहा है। राज्य में प्रशिक्षित एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कॉलेज में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 330 सीटें होंगी, जिसमें BSc लेबोरेटरी साइंसेज, BSc रेडियोलॉजी, BSc एनेस्थीशिया, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc फिजियोथेरेपी की 60-60 सीटें तथा डायलिसिस टेक्नीशियन की 30 सीटें शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस संस्थान की सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 6.87 करोड़ रुपए जारी करने का भी निर्णय लिया है। ये कॉलेज राज्य के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण की अवसर उपलब्ध करवाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुशल एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक मजबूत कार्यबल तैयार करने में मदद करेगा। विशेष स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक संस्थान में 30 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ ये पाठ्यक्रम वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा।
2: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है श्रोताओ वो शुरू हो चुका है। अब से लेकर 8 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ, करेंगे धर्मशाला और आसपास की जानकारियां अपने श्रोताओं के साथ साझा, बातचीत का भी आनंद उठाएंगे श्रोताओं, और प्यारे प्यारे से फिल्मी नगमे आपको सुनाएंगे। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले बताते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं, और वातावरण में नमी है 88%। फिलहाल अभी मौसम खिला खिला और खुला खुला है, और सांझ का समय है, और श्रोता बहुत से श्रोता चाय की चुस्कियों का आनंद ले चुके होंगे, बहुत से श्रोता चाय पी रहे होंगे। चलिए, स्टूडियो में बैठ के हम चाय की चुस्कियाँ तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि श्रोता जो है वो चाय की चुस्कियों का आनंद उठाइए, और साथ ही साथ रेडियो गुंजन से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का भी आनंद उठाइए, और कार्यक्रम में कार्यक्रम के सबसे पहले इस प्यारे से गीत का भी आनंद उठाइए। श्रोताओं बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई हमें मिलता है और रोज़ ना भी सही, लेकिन हमारी जितनी भी ज़िंदगी होती है श्रोताओं, उसमें कभी ना कभी हम किसी ना किसी नए इंसान से जो है वो ज़रूर टकराते हैं। कईयों के साथ हमारी घनिष्ठता हो जाती है और बहुत समय बिताने के बाद हमें लगता है कि ये इंसान जो है वो सही नहीं था या हमारे लिए सही नहीं था। लेकिन वो इंसान अगर सही नहीं था लेकिन उसके साथ बिताया गया समय जो है उसको हम याद करें, उसे दोहराएं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि कब और कहाँ उसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ रहे, उसकी बातों को सुना, उसके साथ समय बिताया। लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए हम जो है वो विचार करके, थोड़ा सा आत्ममंथन करके अगर देखें तो वो गलत इंसान ही सही, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं वो हमें सही शिक्षा जो है वो दे करके जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में आपकी मुलाकात किसी नए इंसान से हो तो घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ वो आपको सीख दे करके ही जाएगा। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला मेरे साथ। और अपने श्रोताओं को साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम रेडियो गुंजन के फेसबुक पेज पर भी लाइव आ गए हैं और फेसबुक पेज से भी आप हमें देख सकते हैं। 91.2 MHz से आप हमें सुन सकते हैं। श्रोताओं अध्यापक दिवस कल मनाया गया और अध्यापक दिवस की खूब धूम थी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में, और सभी शिक्षण संस्थानों में अध्यापक दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बात करें धर्मशाला कॉलेज की तो वहाँ पे भी विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर खूब हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाया। कांगड़ा वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला में भी शिक्षक दिवस जो है वो बड़े ही हर्ष उत्साह के साथ मनाया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति की सम्माननीय सदस्य आदर्श रानी बेदी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य कपिल वालिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और उनकी शिक्षा के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, कविता, भाषण और लघु नाटिका जैसी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के सम्मान में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को और भी अधिक आनंदमय और भावुक बना दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को सही दिशा देने और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम ने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना को और मजबूत किया। साथ ही साथ स्कूल के प्रधानाचार्य कपिल वालिया ने बच्चों को मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करने का संदेश दिया और नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया। श्रोताओं इसके साथ ही और भी संस्थानों में शिक्षक दिवस जो है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दिन को बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी मिलजुल करके खूब आनंदमयी बनाया और साथ ही साथ यादगार भी बनाया। श्रोताओं कार्यक्रम में बातचीत भी करेंगे आगे और साथ ही साथ आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनाएंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे, आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत और हमारी जानकारियां, हमारी बातचीत जो है वो यूं ही जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा मत, यहीं बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए श्रोताओं इस प्यारे से गीत का।

श्रोतों, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, आप हमें सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ फेसबुक का जो हमारा रेडियो गुंजन का पेज है उस पर आप हमें लाइव भी देख पा रहे हैं। और श्रोता, अगर हमारे साथ फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो सभी श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत है इस फेसबुक पेज पर। श्रोताओं, अध्यापक दिवस की बात हम कर रहे थे कि अध्यापक दिवस जो है वो हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया गया और छोटी कक्षाओं से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक सभी ने इस अध्यापक दिवस को यादगार बनाया। और श्रोताओं, सिर्फ एक ही दिन अध्यापक दिवस नहीं होता, बल्कि हर दिन हमें जीवन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। हर दिन अगर ना भी सिखाए तो जीवन में आने वाला कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो उम्र दराज हो या उम्र में हमसे छोटे भी बच्चे क्यों ना हो, वो भी हमें जीवन का पाठ कई बार बहुत अच्छे से दे जाते हैं। हमें सिर्फ सीखना है और उस सीख को अपने जीवन में अमल में लाना है और आगे बढ़ना है। श्रोताओं, शिक्षक दिवस कल मनाया और हर दिन शिक्षक दिवस होता है हमें ऐसे लगता है। साथ ही साथ आज एक और बहुत खास दिवस है और वो है राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस। और राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी विशेषता, इसके बारे में भी कार्यक्रम में आगे बात करेंगे श्रोताओं। फिलहाल कार्यक्रम में प्यारे प्यारे से गीत भी अपने श्रोताओं को हम सुनवाएंगे, तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए अपने रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, शाम का समय है और शाम के समय में अपनी पसंद के गीत अगर रेडियो पे सुनने को मिलें तो क्या बात है, और साथ ही साथ रेडियो सेट्स पर हमारी पसंद के गीत आ रहे हों और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमारी पसंद का आरजे भी वहाँ पे बैठा हो, लेकिन हाँ, गीत सुनते सुनते हम अपने घर के कामकाज जो हैं वो भी निपटा लेते हैं और साथ ही साथ हम भी गुनगुनाते हैं। इस समय शाम जो है वो काफ़ी सुहानी है। मैं जब आ रही थी धर्मशाला से गुंजन स्टूडियो की ओर, तो धर्मशाला से ऊपर का नज़ारा

अलग था, बादल छाए हुए थे और पूरा पूरा क्लाउडी सा वेदर था। जैसे ही धर्मशाला में आए तो एकदम खुला आसमान और जो धर्मशाला की खूबसूरती है, जिसे निहारने के लिए देश विदेश और दुनिया से लोग आते हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहाड़ भी एकदम धुले हुए दिख रहे थे और धर्मशाला से नीचे बड़ोल या इस तरफ की ओर अगर हम नज़र दौड़ा रहे थे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और साथ ही साथ ये जो हमारा धर्मशाला का मोड़ है, जिसे कैंची मोड़ कहते हैं हम, वहाँ पर खूब सारे टूरिस्ट थे जो कि फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ से धर्मशाला का एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य जो है वो कैप्चर होता है। तो बहुत से लोग वहाँ फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे और आते आते अच्छी चीज़ें, अच्छे नज़ारे देख करके हल्की हल्की गुदगुदी सी मुझे भी हो रही थी। वो सब बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम खुला खुला, धुला धुला आसमान, धुले धुले पहाड़ और प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक सा दृश्य जो है वो देखते देखते मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा था। चलिए, सुकून आपको भी महसूस करवाएंगे, प्यारे प्यारे गीत आपको सुनवाएंगे और आपकी शाम को और भी अधिक मज़ेदार बनाने के लिए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं ये प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोता अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता, ये बात उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हारचक्की में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 19 छात्रा जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तथा विभिन्न विद्यालयों से आई खिलाड़ी छात्राओं से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के लगभग 150 छात्राएं विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित मार्गदर्शन, बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की है। श्रोताओं ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं आप कार्यक्रम में चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, आज का दिन जिसके बारे में कार्यक्रम के आरंभ में मैंने बात की थी आपसे कि आज है राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस। क्या है ये दिन, आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओ राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस आज 6 सितंबर को मनाया जाता है और आज 6 सितंबर 2026 का ही दिन है। वैसे तो ये दिन सुबह से मनाया जा रहा है लेकिन कार्यक्रम में समय मिला है तो क्यों ना पुस्तक पठन दिवस की बात हम भी कर लें। ये दिन हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है श्रोताओ वो है लोगों को अपनी पसंद की किताबें पढ़ने, नए ज्ञान और कल्पना की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। और इस दिन का उद्देश्य लोगों को अपनी इस दिन का महत्व ये दिन हमें स्क्रीन से दूर रहकर किताबों के साथ समय बिताने और पढ़ने की आदत को मजबूत करने का मौका देता है। श्रोताओ आज है राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस और जिस तरह से कल शिक्षक दिवस था और हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हर दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से पुस्तक पठन दिवस राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस आज है लेकिन पुस्तकें जो हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हम बचपन से ही जब पढ़ना या बोलना शुरू करते हैं उसके साथ साथ ही हमारी पढ़ने की भी जो है प्रक्रिया या अभ्यास जो है वो शुरू हो जाता है और तब से लेकर ताउम्र ये पढ़ना जो है वो चलता रहता है। और कुछ बहुत ही अच्छे पाठक होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा पुस्तकों को बनाया होता है, वो कुछ ना कुछ कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ या ऐसी रचनाएँ जो उन्हें सुकून देती हैं, खुशी देती हैं, उन्हें वो पढ़ते रहते हैं। और पढ़ना भी चाहिए श्रोताओं, हम किसी पे थोप नहीं सकते ये बात कि पढ़ना ही चाहिए लेकिन पढ़ने का भी एक अलग ही हम कह सकते हैं जुनून होता है। जो लोग पढ़ते हैं और जिन्हें पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाना, उसमें गुम हो जाना ये चीज़ पता है, वो सभी समझ सकते हैं कि पढ़ने की गहराई क्या होती है और किस तरह से हम पढ़ते पढ़ते उस पठन में खो सकते हैं, ज़िंदगी की, दुनियादारी की सारी जो भी परेशानियां हैं उन्हें भूलकर हम उसे एक छोटी सी किताब में खो करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से, सुकून से या यूं कहें कि उस कहानी और उस उपन्यास से जोड़ करके बिल्कुल ही अपनी अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। श्रोताओं पठन और पाठन की ये बातें मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि मुझे ये कहते कहते बड़ी खुशी हो रही है कि पढ़ना कितना अच्छा होता है, किस तरह से हम पढ़ते पढ़ते उन कविताओं में, उन कहानियों में खो सकते हैं और खो जाते हैं, उसी तरह से जो पढ़ता है उसे कितनी खुशी होती होगी। चलिए आपकी इस खुशी को हम यूं ही बरकरार रखते हैं और साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ एक और मज़ेदार चीज़ है जो कि गीत संगीत है, हमारे जीवन का हिस्सा, उससे भी आपको दूर नहीं करते। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 7:05 पर भी। उससे पहले आप सुनेंगे समाचार।
1: कल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित फोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और सभी श्रोताओं का समाचारों के बाद स्वागत है कार्यक्रम में फिर से। श्रोताओ, अब सीधा सीधा रुख करते हैं कार्यक्रम में आगे संगीत की ओर, और सुनवाते हैं आपको अमित कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म तेरी कसम का ये गीत है। श्रोताओं, एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, 91.2 MHz धर्मशाला से इस समय आप हमें सुन पा रहे हैं लाइव, और साथ ही साथ हमीरपुर के रेडियो केंद्र से भी आप हमें सुन पा रहे हैं। और हमीरपुर से बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़े हैं। उन्हें धर्मशाला रेडियो गुंजन के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, ये सुन करके हमें खुशी हुई और हमारी टीम की मेहनत उन्हें पसंद आई, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और कार्यक्रम में आगे और भी आपके साथ बातचीत करेंगे, साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनवाएंगे। खासकर बात कर रही हूँ इस समय मैं श्रोताओं राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के बारे में। राष्ट्रीय पुस्तक दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जाता है, और बता दें आपको कि ये जो राष्ट्रीय पुस्तक दिवस है इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुई थी, और भारत में इसे 19 जून को मनाया जाता है। 6 सितंबर को मनाया जाने वाला ये जो राष्ट्रीय पुस्तक दिवस है, इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल उपकरणों से, स्क्रीन से दूर रहकर एक अच्छी किताब पढ़ने और साहित्य का आनंद लेने के लिए प्रेरित करना है। और बात करें भारत की, भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस जो है वो श्रोताओं 19 जून को मनाया जाता है। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पाणिकर की पुण्यतिथि पर भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस है ये मनाया जाता है, और इसका मुख्य संदेश पढ़ो और आगे बढ़ो है। और श्रोताओं, बिल्कुल सही बात भी है कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। शिक्षा से ही हमारे ज्ञान के चक्षु जो हैं वो खुलते हैं, और हमें सारी दुनिया का और अपना भी ज्ञान जो है वो पढ़ने से ही होता है। और देश दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से जो सबसे मुश्किल काम है श्रोताओं, वो है अपने आप को पढ़ना। और जिसे अपने आप को पढ़ना आ गया, समझ लीजिए, मान लीजिए उसने सारी दुनिया को जीत लिया। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ साथ साथ हमीरपुर के ठटवाल रेडियो केंद्र पर भी हमें सुना जा रहा है श्रोताओं। और अब कार्यक्रम में हम चलते हैं गीत संगीत मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

जी अशोता, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ वाला इंसान प्यार जता रहा है या गुस्सा, और ये सामने वाला इंसान, या यूं कहें कि साथ वाला जो इंसान है, वो वही इंसान होता है जो हमारा भला चाहता है। अक्सर हमें अपने घर परिवार के या अपने जो खास लोग होते हैं उनकी बातें कई बार हमें चुभ जाती हैं, या उनके बोलने का तरीका कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से माँ अपने बच्चे को डांटती है, और बच्चा जब छोटा होता है उस समय उसे समझ नहीं आता कि माँ मुझे क्यों डांट रही है, लेकिन उस डांट के पीछे उस माँ का उसको सुधारने का प्रयास होता है, और उस माँ की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, अगर आज मैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दिखाऊंगी तो कल को वो जीवन में कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा और हमेशा अपने बड़ों पे ही आश्रित रहेगा। इसलिए माँ की डांट को एक, वो कहते हैं ना, प्रसाद की तरह लीजिए। अगर आप बड़े भी हो गए हैं तब भी आपके पेरेंट्स आपको अगर डांटते हैं, आपके साथ कभी गुस्से में बात भी कर लेते हैं, तो उसके पीछे उनका यही रवैया होता है कि हम जो हैं वो जीवन में आगे बढ़ें और जीवन में जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। इस समय आप हमें सुन पा रहे हैं धर्मशाला और साथ ही साथ हमीरपुर में 88.4 MHz रेडियो ढटवाल की आवाज़ पर भी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपसे बातचीत और भी करेंगे, साथ ही साथ जानकारियां भी साझा करेंगे, लेकिन अगर गीत संगीत के कार्यक्रम में गीत संगीत ही ना हो तो फिर उस कार्यक्रम का जो है वो आनंद नहीं रहता। इसलिए आपका आनंद कार्यक्रम के साथ यूं ही बरकरार रहे उसके लिए सुनवा रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पुस्तक दिवस के बारे में कि पुस्तक दिवस या पुस्तकों को पढ़ना पढ़ना हमारे लिए कितना जो है वो अच्छा होता है। पढ़ने से श्रोताओं हमारी जो याददाश्त है और एकाग्रता है वो बढ़ती है और हमारा तनाव कम होता है। आपने देखा होगा या अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी कभी हम थोड़े से चिंतित परेशान होते हैं तो अपनी पसंद की कोई पुस्तक उठा करके हम उसे पढ़ने लगते हैं, उसमें खो जाते हैं। या अपनी पसंद की ना भी हो तो कोई भी पुस्तक रैंडमली हम लेते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें खो जाना यानी अपने टेंशन और तनाव को भूल जाने जैसा है। और आपने घर परिवार रिश्तेदारी में या ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को खासकर देखा होगा जो पढ़ते हैं और आज के इस आधुनिक दौर में भी वो पढ़ाई में समय बिताते हैं, यानी उन्हें किताबें पढ़ना या कुछ भी रोचक जो उन्हें लगता है वो पढ़ना अच्छा लगता है। और इस तरह से जो किताबें पढ़ने वाले बुजुर्ग हैं और जो किताबें नहीं पढ़ते उनमें तुलना करके देखिएगा, वैसे सहज ही है, पता चल जाता है कि जो पढ़ता है वो कितना शार्प होता है, उसका दिमाग कितना तेज होता है। और जो पुस्तकों से दूरी बना चुके हैं, जिन्होंने पुस्तकों को स्कूल कॉलेज टाइम के बाद नहीं छुआ है, नहीं पढ़ा है, उनके मानसिक स्तर में भी काफ़ी अंतर आपको लगेगा। और जो अभी भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं उनका दिमाग बहुत एक्टिव स्मार्ट होगा और मानसिक रूप से बहुत ही सक्रिय और सक्रिय तरह से वो हर तरह की गतिविधियों में भी भाग लेते हैं जो खासकर पुस्तकें पढ़ते हैं। किताबें मनोरंजन का एक, हम कह सकते हैं कि सस्ता साधन है, शिक्षा का एक उपकरण और समय को याद रखने का एक माध्यम भी है किताबें। तो किताबें ज़रूर पढ़िए, मेरे आग्रह करने पर नहीं, आपको खुद ही लगेगा जब आप कोई किताब पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद जो उसमें रुचि बनती है और वो रुचि बढ़ती जाती है तो आपको लगता है कि चलो एक पन्ना और पलटते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं, इसे भी ख़त्म कर ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम कह सकते हैं नशा होता है किताबों का भी, किताबें पढ़ने का भी। वैसे नशा जो है वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जो किताबों की खूबियाँ हैं या पढ़ने की जो खासियत है उसको समझाने की कोशिश करते करते ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। नशा जो है वो किसी भी प्रकार का नशा है वो घातक ही होता है, लेकिन किताबें पढ़ने का जो आनंद है, किताबें पढ़ने से जो हमें मानसिक शांति सुकून मिलता है वो कहीं से भी किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। श्रोताओं, आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आनंद उठा रहे हैं इस समय आप रेडियो गुंजन धर्मशाला से। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

14.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बात हो रही है आज पढ़ने की। जी हाँ, पढ़ाई यानी पुस्तकें पढ़ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे फेसबुक पेज पर हमारे बड़े प्यारे से एक श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन कमेंट के माध्यम से साझा की है कि उन्होंने कहा है कि जो सिर किताबें पढ़ने में झुकते हैं वो सिर किसी और के आगे नहीं झुकते। और इंदु जी, आपका ये कमेंट मेरे दिल को छू गया है। वाकई में बहुत ही गहरी बात इस एक लाइन में है कि जो सिर किताबें पढ़ने में झुकते हैं वो किसी और के आगे नहीं झुकते। किताबों में इतनी ताकत होती है कि वो आपको सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। आपके जीवन के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में ये किताबें ही हैं जो हमारा साथ देती हैं। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और पढ़ने से श्रोताओं, मुझे एक बात याद आई, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा अगर आप सुन रहे हैं। आजकल का दौर बहुत, हम कह सकते हैं, सुविधाओं से संपन्न है। हर कोई सुविधा संपन्न है, हर किसी के पास हर कुछ, खासकर जो गैजेट्स हैं वो सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात करें या मैं अपनी ही बात करूं, तो जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, खासकर 11th 12th के बाद कॉलेज तक का जो मेरा सफ़र था, उस समय का जो दौर था, और 90 के दशक में जो 90 नहीं, अपने आप को ज़्यादा छोटा नहीं बनाते हम, 80 के बाद जो पैदा हुए हैं और जो 90s में स्कूल में थे और 2000 के दौर में स्कूलों में कॉलेजेस में थे, वो शायद इस दौर से गुजरे होंगे, मेरे हम उम्र, मेरे सहपाठी या जो उस दौर में पढ़ते होंगे, कि उन दिनों हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम हर सब्जेक्ट की गाइड खरीदें या नोट्स के लिए किसी बुक स्टॉल पर जा करके हर तरह की हम किताबें जो हैं वो लें। उसके लिए एक किताब आती थी श्योर शॉट, और मैं पैसों को जोड़ जोड़ के हर सब्जेक्ट का जो मुश्किल सब्जेक्ट था उसके श्योर शॉट खरीदती थी, और फिर उसको खरीद करके उसमें जो प्रश्न उत्तर होते थे उनको पढ़ती थी। और मुझे लगता था कि शॉर्ट है इसलिए उसमें थोड़ा सा अपना अंदाज मिला करके मैं उस प्रश्न के उत्तर को बढ़ा देती थी। और इस तरह से मैंने अपनी 11th 12th और कॉलेज तक की जो पढ़ाई है, कह सकते हैं, वो पूरी की है। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसमें जो किताबों का ज्ञान था वो तो था ही, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद जो अपना दिमाग चलता था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से एलैबोरेट किया जाए, वो कला मेरी खुद की थी। उसको मैं बढ़ाती थी प्रश्न के उत्तर को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉलेज में एक ही प्रश्न 20 नंबर

फाइबर का होता था, तो उसको लेंथी बनाने के लिए उन्हीं लाइनों में से कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ा करके मैं लिखती थी। और बहुत 90s, आजकल तो 90 और 98% का दौर है, इतने तो नंबर नहीं लेती थी, लेकिन हाँ जितने भी नंबर आते थे उनसे खुशी जरूर होती थी, क्योंकि वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा होते थे। और श्रोताओ, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आज के दौर में वैसे तो हर कोई सुविधा संपन्न है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार, कुछ घर ऐसे होंगे जिनमें, वैसे भारत सरकार ने आजकल बड़ा सरल और सुगम कर दिया है बच्चों को कि वो सरकारी स्कूलों में उन्हें किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, खाना भी मिलता है, लेकिन फिर भी जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो ज़िंदगी की कश्मकश में होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो या तो ज़रूरी किताबें नहीं ले पाते या ज़रूरी इम्तिहान के लिए वो सारा कुछ जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, कोचिंग क्लासेस, तो अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा, ऐसी कोई बच्ची हो जिसे आपको लगता है कि ज़रूरत है और हम अपने 100, 500 या कुछ भी अपनी इच्छा से उसको हम या किताबें ही खरीद दें या उसकी एडमिशन करवा दें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी एक बात होगी। एक बच्चे का भविष्य संवरेगा और आपको जो खुशी मिलेगी ताउम्र, उसकी तो क्या ही बात। तो चलिए श्रोताओं, बातें करते करते मैं बातों को बहुत ज़्यादा ना कर दूं और आप लोग कहें कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं और गीत संगीत तो गायब हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम गीत संगीत के साथ बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं श्रोताओं। बता दें आपको कि इस वक्त आप हमें सुन पा रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और साथ ही साथ 88.4 हमीरपुर में रेडियो ढटवाल की आवाज़ से भी आप हमें लाइव सुन पा रहे हैं श्रोताओं। और देश दुनिया की बात करें तो वहाँ पर भी आप हमें रेडियो गुंजन के जो हमारी ऐप है उसके माध्यम से सुन सकते हैं और सुन पा रहे हैं। चलिए अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा, मस्त सा, मस्ती भरा गीत, मस्ती की पाठशाला रंग दे बसंती फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओ, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। जब हम स्कूल में थे तो मस्ती करते थे, और हमें घर वाले कहते थे कि पढ़ो लिखो तभी आप आगे बढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़िए, और पढ़ने के लिए हर किसी को प्रेरित कीजिए।

0: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में समय है प्रादेशिक समाचारों का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक, कहा इन वर्षों में स्थापित हुए विकास के नए आयाम। भाजपा का आरोप, कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज कर इसकी प्रश्नावली रद्द करने का किया आग्रह। और प्रदेश में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक मंडियों में भेजी गई करीब 60 लाख पेटियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक के 44 मेधावियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। ये शैक्षणिक भ्रमण 12 सितंबर तक चलेगा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों को नवाचारों, तकनीकों और वैश्विक कार्यप्रणालियों से परिचित करवाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जापान से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्कृति का अनुभव हासिल करेंगे, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस भ्रमण से विद्यार्थियों को नई जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की दुधाल्टी पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार पात्र लोग योजनाओं की जानकारी के अभाव में सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों से वंचित रह जाते हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को इस योजना के लिए पात्र परिवारों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। बिलासपुर जिले के बरमाणा में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और देश सेवा, सुशासन और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बीच भाजपा द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने आज नाहन में बताया कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा, समर्पण और संघर्ष को समर्पित है और 25 वर्षों का उनका राजनीतिक सफर प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय राजनीति में 25 वर्ष जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। उनके ये 25 वर्ष सेवा, समर्पण और संकल्प से भरे हुए, संघर्ष से भरे हुए 25 वर्ष और उनका ये राजनीतिक जीवन में ये समझता हूँ कि एग्जाम्पलरी है, उदाहरण है पूरे विश्व के अंदर। जब से केंद्र में उन्होंने इस देश का नेतृत्व संभाला है, उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार से भी कभी केंद्र की सरकार जो है वो योजनाओं के माध्यम से इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है लोगों के जीवन में जो है वो परिवर्तन लाया जा सकता है।
1: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है। नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार करीब 2000 स्कूलों को बंद कर चुकी है और इसके बावजूद भी शिक्षा सुधार का गुणगान किया जा रहा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 3,500 स्कूलों में एक एक अध्यापक है, जबकि 150 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज कर इसकी प्रश्नावली रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि तेलंगाना और बिहार में अपनाई गई पद्धति के अनुसार जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार कर पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक चर्चा के बाद ही नई प्रश्नावली तैयार करने का सुझाव दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
4: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
5: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना 1.5 लाख से अधिक पेटियां मंडियों में भेजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 60 लाख से अधिक पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
7: मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। एपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। मंडियों के साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। शिमला और किन्नौर क्षेत्र सेब भेजने में सबसे आगे है। इस बार फसल कम है लेकिन बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। शिमला और किन्नौर के 20 किलो के बॉक्स का दाम 400 रुपए से 4000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीजन की शुरुआत में 2.25 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आंकड़ा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा पेटियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार उत्पादन 2.25 करोड़ पेटियों के आसपास सिमटने के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के थुलेल में आज छात्राओं की अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में भारी बरसात के चलते क्षतिग्रस्त बलाणा गोला संपर्क मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन से प्रभावित हो रहे हिस्से का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को वर्ष भर खेल गतिविधियों से जोड़े रखने पर बल दिया है। वे कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाड़ में अंडर 19 खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षा और खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है। चंद्र कुमार ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा करते हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पाहल में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्राओं को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अगले माह टूटू और सुन्नी में स्थानीय महिलाओं के लिए महिला खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार से जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी पाई गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये खामियां सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे पर सवाल खड़े कर रही है।
8: शिक्षा के आंकड़े आप देख लें, अशिक्षा का स्तर क्या है। बड़ी हैरानी होती है जब 150 से ज्यादा स्कूल हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें एक ही अध्यापक नहीं, 3,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक अध्यापक है। और जो दावा करते थे कि हिमाचल प्रदेश तो पिछले 4 सालों में शिक्षा में बड़ी लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर तो देश भर में आ गए हैं, मैं देख रहा था आंकड़े, जो टॉप के 10 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का कहीं नाम भी नहीं है।
1: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। खासतौर पर सोलन और सिरमौर जिलों में पिछले कुछ दिनों से व्यापक वर्षा हो रही है। इस वर्षा से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सोलन जिले के परवाणु क्षेत्र में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल 7 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक, कहा इन वर्षों में स्थापित हुए विकास के नए आयाम। भाजपा का आरोप, कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज कर इसकी प्रश्नावली रद्द करने का किया आग्रह। और प्रदेश में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक मंडियों में भेजी गई करीब 60 लाख पेटियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप
0: श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब मैं ये कहूँगी कि गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सुन रहे थे मेरे साथ, क्योंकि श्रोताओं अब कार्यक्रम में जितना समय बचा है उसको हम यूं ही नहीं गंवाएंगे। एक प्यारा सा गीत आप सबकी नज़र कर रहे हैं। इसी वादे के साथ बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गुड़िया आकर गुड़िया गुड़िया आकर आ गुड़िया
1: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे
5: कर्तव्य?
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रोपवे से जुड़ेंगे हिमाचल के चार धार्मिक पर्यटन स्थल। मनाली में अगले माह होगा पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप। गाँवों में प्लास्टिक निस्तारण के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लगेंगे पंख। अब समाचार विस्तार से। दुर्गम धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के तहत चार रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एनएचएलएमएल की ओर से प्रस्तावित इन परियोजनाओं में सिरमौर, कांगड़ा और चंबा के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल शामिल हैं। परियोजनाओं का बड़ा उद्देश्य सर्दियों में भारी हिमपात के कारण बंद होने वाले रास्तों की समस्या कम करना है। चुंजा साहसिक पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। डीपीआर तैयार करने वाले कंसल्टेंट अत्याधुनिक तकनीक, भू तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात मांग का आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों की बीटेक के 44 मेधावियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण 2026 के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 12 सितम्बर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर है। इससे पहले आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए कजाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर आयोजित किया गया था। इस टूर के माध्यम से विद्यार्थियों ने कौशल विकास की विविध पद्धतियों और वैश्विक व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस अभिनव पहल को आगे बढ़ाते हुए अब बीटेक के मेधावी विद्यार्थियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान किया जा रहा है। सरकार कौशल शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस शैक्षणिक भ्रमण में विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों की 24 छात्र और 20 छात्राएं भाग ले रही हैं। विद्यार्थी जापान की प्रमुख शैक्षणिक, अनुसंधान एवं औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे। इनमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जैक्सा सुकुबा स्पेस सेंटर, साइबरडाइन रोबोटिक स्टूडियो, जेएल एरोस्पेस फैक्ट्री, क्योसीरा फैक्ट्री तथा ओसाका स्थित विभिन्न उद्योग शामिल हैं। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, उन्नत विनिर्माण, नवाचार और आधुनिक परिवहन प्रणालियों का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी जापान की अनुशासित जीवन शैली, विरासत, कार्य संस्कृति और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। ये पहल राज्य सरकार की मेधावी युवाओं को वैश्विक अनुभव प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 5 से 8 अक्टूबर तक सोलंग नाला की स्की ढलान में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहसिक खेल आयोजन में देश विदेश के पैराग्लाइडिंग पायलट हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी संगठन और पर्यटन कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं। प्री वर्ल्ड कप के लिए अब तक 64 पायलटों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इनमें 4 महिला पायलट भी शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पायलट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मनाली पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के दौरान पायलट फाथरों से उड़ान भरेंगी और सोलंग नाला में लैंडिंग करेंगी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान में उड़ान भरती पायलटों का रोमांच देखने लायक होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले पायलटों के लिए FEI लाइसेंस अनिवार्य होगा।
1: प्रदेश सरकार के प्रभावी कदमों से स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ हो रहा है और हिमाचल देश का स्वास्थ्य हब बनकर उभर रहा है। राज्य में प्रशिक्षित एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कॉलेज में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 330 सीटें होंगी, जिसमें BSc लैबोरेटरी साइंसेस, BSc रेडियोलॉजी, BSc एनेस्थीशिया, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc फिजियोथेरेपी की 60-60 सीटें तथा डायलिसिस टेक्नीशियन की 30 सीटें शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस संस्थान की सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 6.87 करोड़ रुपए जारी करने का भी निर्णय लिया है। ये कॉलेज राज्य के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण की अवसर उपलब्ध करवाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुशल एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का एक मजबूत कार्यबल तैयार करने में मदद करेगा। विशेष स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक संस्थान में 30 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ ये पाठ्यक्रम वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में एलाइड एवं हेल्थकेयर शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है। इससे कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत और विस्तार से स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
2: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फ्लेक्सी फंड से अब गांवों की स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। शिमला में शनिवार को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की पहली बैठक में करीब 4 करोड़ रुपए की स्वच्छता योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के लिए अत्याधुनिक मशीन स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इससे गांवों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होने के साथ पर्यावरणीय चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले राष्ट्रीय, जिला और अन्य बड़े आयोजनों के लिए 15 मोबाइल शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इससे अस्थायी आयोजनों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने और खुले में शौच रोकने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में अब पर्यटन के साथ साथ रोजगार और आर्थिकी की नई बयार बहने वाली है। प्रदेश में इको टूरिज्म पारिस्थितिकी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वन विभाग ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने अगले 5 सालों में इको टूरिज्म के जरिए 200 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके केंद्र में हिमाचल के स्थानीय लोग होंगे। नई इको टूरिज्म साइट्स पर अब 80% रोजगार स्थानीय हिमाचली युवाओं को देना अनिवार्य कर दिया है। इस विस्तृत रूपरेखा को धरातल पर उतारने के लिए धर्मशाला कॉलेज की सभागार में वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय अहम वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित वर्कशॉप में इको टूरिज्म सोसाइटी की CEO एवं IFS अधिकारी के तिरुमल ने विभाग का विजन साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश को इको टूरिज्म से करीब 15 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिल रहा है। विभाग की तैयारी इस आय को महज 1 साल के भीतर बढ़ाकर 55 करोड़ रुपए तक पहुँचाने की है। इसके लिए शिमला और धर्मशाला सहित विभिन्न वन सर्किलों को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। पर्यटन के विस्तार के लिए प्रदेश में 26 नई इको टूरिज्म साइट्स विकसित की जा रही हैं। इनमें से 17 साइट्स ऑपरेटरों को आवंटित हो चुकी हैं, जबकि 9 पर मुहर लगनी बाकी है। आज की समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। सुनते रहिए गुंजन रेडियो धर्मशाला 91.2 FM। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम का गीत है तेरी तस्वीर मिल गई, जो कि बेताब फिल्म से लिया गया गीत है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

से कोई तो बताओ, कोई समझाओ दिल, किसको दूं या उसको दूं।

समझाओ दिल, इसको दूं या उसको दूं।

मिशन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।